मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, खेत खलिहान। किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता। विषय है पशुओं में श्वास रोग। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: रोग के लक्षण प्रकट होने पर नाक से आने वाला

0: विटामिन के की सुई भी लगवानी चाहिए, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट या कालबोराल आदि पशुओं को देना चाहिए यदि औषधियों से लाभ नहीं हो रहा है और खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है तो पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार उसका करना चाहिए। अब मैं क्या क्या करूँगा आपसे, सर्दी खांसी या कफ जुकाम जो पशुओं में होता है इसमें पशुओं के नाक की सलाइसी की झिल्ली में तीव्र सूजन आ जाती है। सामान्यतः इस रोग से पशु की श्वास नली प्रभावित होती है जिससे खांसी आती है और नाक से उजला हरा पीला होता है। इसका कारण ये होता है कि उत्तेजक पदार्थ जैसे ठंड, सर्दी, धूप, कण, धुआं, गैस इत्यादि इस रोग का कारण बनते हैं। वातावरण में अचानक से आने वाले परिवर्तन इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले नाक से पतला पानी जैसा स्राव बहने शुरू होता है जो बाद में क्रमशः बढ़ा उजला हरा पदार्थ पीला रंग का बन जाता है। आँखों से भी पानी आता है, आँखों की सुलेष्मा लाल हो जाती है, प्रभावित पशु को बुखार भी हो सकता है तथा पशु खांसी कफ इत्यादि से भी हो सकता है। प्रभावित पशु को उपचार करने के लिए कुछ बातों पर आप ध्यान दें। प्रभावित पशु को स्वच्छ वातावरण में रखें जिससे उत्तेजनकारी गैस आदि से मुक्ति मिले। स्वस्थ वातावरण में सांस पशु लें। तुरंत आराम के लिए सुहाने वाली दवा जैसे दार्जिलिंग का तेल, जिंजर, बेंजू, यूकेलिप्टस का तेल में से किसी एक औषधि का पशु को भपाड़ा देना चाहिए। भपाड़ा देने के लिए इसमें से एक औषधि की 30 मिलीलीटर मात्रा को एक बाल्टी पानी में पशु की नाक के पास रखें। इसे एक बार फिर से सुनें। इस औषधि की 30 मिलीलीटर मात्रा एक बाल्टी में रख करके पशु की नाक के पास रखें और एक कपड़े या कंबल को पशु को इस तरीके से ढकना चाहिए जिससे सारा भाप पशु के नाक में। छोटे पशुओं के लिए चौड़े मुंह के बर्तन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस रोग से प्रभावित जो पशु हैं सर्दी खांसी या कफ जुकाम से उन्हें आप तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और उसके अनुसार आप दवाएं लें। उसके अलावा कुछ और बीमारी भी होती है जैसे कि श्वास नली का स्ट्रोक, ये भी श्वास नली या ट्रेकिया में आने वाली सूजन के कारण होता है। इसमें भी पशु को काफ़ी दिक्कत होती है, छोटी तथा मध्यम अवधि में भी यह रोग हो सकता है। तो ऐसे पशुओं को आप जहरीली गैस, दवा, धुआं इत्यादि से आप दूर रखें तो ये पशु जो है वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह से पशुओं को श्वास रोग से आप बचा सकते हैं।
1: पशुओं में श्वास रोग, अभी किसान भाई श्रीनिवास सहाय की यह पूर्व प्रसारित कृषि वार्ता सुन रहे थे। हमें खेद है कि आप इस वार्ता को ठीक से नहीं सुन पाए। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट

0: भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुने आज का चिंतन मनन।
3: मनुष्यों के द्वारा निंदा को रस की मान्यता दी गई है। निंदा एक महारस है और इसमें डूबकर मन समाधि के समान आनंद प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है। कुछ काम न हो और ऐसा कोई मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। एक ही पल में न जाने कितने आंकड़े, तथ्य, आलोचना और सुझाव एकत्र हो जाते हैं, सोचकर हैरानी होती है। अगर किसी विषय पर रचनात्मक कार्य इतना किया जाता तो शायद एक शोध ग्रंथ बन जाता और रोचक भी होता। निंदा का सांकेतिक स्वरूप और लक्षण रुग्ण और अस्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। निंदा कभी भी स्वस्थ मानसिकता का पर्याय नहीं हो सकती। सुझाव, प्रशंसा एवं सहयोग के उत्कृष्ट तत्व समाहित किए हुए जो विचार होते हैं उनकी तुलना में निंदा दूसरों को गिराने, अपमानित करने और पल पल असहयोग करने का दुर्भाव लिए हुए विचारों का एक समूह है। अगर हम प्रशंसा और निंदा के बीच आंकड़ों के खेल को देखें तो निंदा का पलड़ा भारी दिखेगा। प्रशंसा मन को सुकून देती

0: और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, किंतु निंदा कांटों जैसी चुभती है, फिर भी हम इसे अपने जहन से चिपकाए रहते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकृति होती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानता है। ऐसे व्यक्ति कभी खुश रहते नहीं और औरों की खुशी उनसे देखी नहीं जाती, वे तो बस लोगों की नुक्ताचीनी करने में लगे रहते हैं। निंदक एक तरह के सर्जक भी हैं, वो सृष्टि करते हैं। निंदक अपने विचारों के द्वारा कुछ नई नई अजीब अजीब किस्म की बातें बनाते हैं, विचारों की सर्जना होती है। निंदक केवल दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और नकारात्मक सोचते हैं। सोचते सोचते इनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है और इतने आंकड़े रखना शुरू कर देते हैं कि संबंधित व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व की इतनी बारीकियों का पता ना हो। निंदक सदैव नई नई सूचनाओं से भरे रहते हैं। फला व्यक्ति एक घंटे के अंदर कहाँ कहाँ गया, क्या क्या उसने किया, उसने अतीत में क्या किया था, भविष्य में क्या करने की संभावना है, कई तरह की बातें आती हैं। और चाय की चुस्कियों के साथ अगर निंदा के रस का आनंद लिया जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन योग और मनोविज्ञान के अनुसार ये एक ऐसी वृत्ति है जो निंदक को घोर पतन की ओर धकेलती है। ये ऐसा पतन है जहाँ केवल पीड़ा है, इससे उभरना बहुत कठिन है। निंदा करते करते व्यक्तित्व के अनेक गुण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दूसरों की चुगली करने, उनके नकारात्मक पक्ष को सोचने विचारने और बात करते रहने के कारण व्यक्ति के सोच और व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। कोई व्यक्ति निंदा क्यों करता है? वो निंदा इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने आप में घोर असंतुष्ट है। उसके भीतर जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है और ऐसी स्थिति जिसे वो चाहता है उसे मिल नहीं पाती। इसी अंतर की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए वो निंदा शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता तो उसके पास अपने विचारों को दिशा देने के लिए भी कोई योजना नहीं होती। ऐसे में उसे खाली समय मिल जाता है और उस स्थिति में नकारात्मक विचारों का झंझावात उठने लगता है, निंदा शुरू हो जाती है। हम किसी की निंदा करके उसके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इससे कालांतर में अपना मनोबल भी गिरता है। इसीलिए किसी की निंदा न करके सदैव उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा से श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। निंदा करते रहने से कुंठा का भाव जागता है। समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, व्यक्ति और समाज दोनों का पतन होता है। सहयोग करने, प्रशंसा करने, दूसरों की गलतियां माफ करने आदि से समाज में श्रेष्ठ मूल्यों का विकास होता है। जब हम निंदा करते हैं तो ये मूल्य गिरते हैं और प्रशंसा करते हैं तो मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः निंदक नहीं, श्रेष्ठ मूल्यों का प्रशंसक बनना चाहिए। हम इस संदर्भ में सोचें, विचार करें।
1: ये था आज का चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। निवेदित है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, आरंभ रोज की तरह देश वंदना से।

हमारा देश यह भारत, हमें अभिमान है इसका। बचाकर हमको रखना अब सदा सम्मान है इसका।

ईश्वर इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि में सूक्ष्म और बृहद रूप में वे ही समाहित हैं। वे ही इस संसार के संचालक हैं, पालक हैं और विनाशक भी।

मनुष्य प्रकृति का एक अंग मात्र है, उसका नियंता नहीं, ना ही वह कभी इसका अधिपति हो सकता है, क्योंकि प्रकृति की शक्तियों में आज भी मानवीय शक्तियों से अत्यंत विकराल एवं विराट है। उसके समक्ष संपूर्ण मानवीय शक्तियां अत्यंत लघु, सूक्ष्म या कहें तुच्छ मात्र है।

सदाचार और दुराचार हमारे चित्त के ही दो अलग अलग आचरण हैं, किंतु दोनों अपने परिणाम में अत्यंत भिन्न एवं प्रकृति से सदैव विपरीत हैं। जहां सदाचार हमें सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ाता है, वहीं दुराचरण से हमारी पद प्रतिष्ठा और यहां तक कि हमारी आत्मा तक कुंठित हो जाती है।

जो दूसरों की भलाई करते हैं उनका सदैव भला ही होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूसरों को सुवासित करने वाला इत्र पहले स्वयं ही सुवासित रहता है।

0: ये थी आज की वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जिन गायक कलाकारों को सुना वे थे सेवंती सान्याल, पुष्पा पागधरे एवं साथी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन की वार्ता। विषय है होम्योपैथिक में रोगों का उपचार।
1: होम्योपैथी, जैसे ग्रीक शब्द होमियोज यानी समान और पैथोज मतलब पीड़ा से लिया गया है, इसमें उपचार करने की कला है। यह एक उत्कृष्ट चिकित्सकीय पद्धति है। इसके संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनिमैन द्वारा प्रतिपादित कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर काम करती है। यह सैमुअल हेनिमैन ने 200 वर्ष पूर्व ही होम्योपैथिक प्रक्रिया प्रणाली को एक सरल सामान्य कहावत में सीमित कर दिया था, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, समान लक्षण द्वारा समान लक्षणों का उपचार। वर्तमान समय में यह बीमारी लोगों

0: को फिर से स्वस्थ करने के लिए केवल उपचार करने का व्यापक रूप से स्वीकार्य तरीका ही नहीं बल्कि ज़्यादा सुरक्षित और सौम्य तरीका भी है। होम्योपैथिक के जरिए कोई व्यक्ति धीरे धीरे और अस्थायी रूप से दीर्घकालिक या जीवन भर चलने वाली शारीरिक परेशानियों के साथ उन दवाओं को भी दूर कर सकता है जो किसी अन्य उपचारात्मक पद्धति से नहीं दूर हुई हो। होम्योपैथिक उच्च सामर्थ्यवान पोटेंटाइज तत्वों की बेहद छोटी खुराक की मदद से शरीर का को स्वयं को ठीक करने की शक्ति बढ़ाने का काम करती है। होम्योपैथिक अक्सर वहाँ ज़्यादा काम करती है जहाँ सामान्य प्रैक्टिस बेअसर हो जाती है। वास्तव में होम्योपैथी में समय की बिल्कुल बर्बादी नहीं है। बीमारी के लक्षण देखते ही होम्योपैथिक औषधियों का सुझाव देना संभव है। औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी और उसकी रोगाणु वृद्धि क्षमता जानने के लिए स्वस्थ मानवों पर होम्योपैथिक की सभी दवाओं को प्रमाणित किया जाता है। होम्योपैथिक दवाओं का लेना एकदम सुरक्षित है। कई निदान और उपचारात्मक पद्धति आई और बिना कोई प्रभाव छोड़े चली गई, लेकिन होम्योपैथिक समय की परीक्षा पर खरी उतरी है। यही वजह है कि इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। लगभग 3000 होम्योपैथिक दवाएं मौजूद हैं। दवा का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि क्या रोग तीव्र है या दीर्घकालिक। तीव्र रोग हाल ही में पैदा होता है, जैसे जुखाम, बुखार, सिरदर्द, जो बेहद तेज़ी से बढ़ते हैं। यदि सही ढंग से चुनी हुई दवा रोगी को दी जाए तो ये बेहद तेज़ी से परिणाम देती है। दीर्घकालिक वह रोग है जिनका लंबा इतिहास है, जैसे दमा, दाद, जोड़ों का पर्दा आदि। दीर्घकालिक रोगों को ठीक होने के लिए निश्चित रूप से कुछ समय लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि होम्योपैथिक दवाई को लक्षण की समानता के आधार पर दिया जाता है। होम्योपैथिक दवाई बच्चों और वयस्क दोनों के लिए समान रूप से अच्छी है। यदि बच्चों को शुरुआत से ही होम्योपैथिक उपचार दिया जाता है तो यह न केवल रोग को पूरी तरह से ख़त्म करने में मदद करती है और बल्कि रोगों के अंदर दीर्घकालिक बनने से रोकती है। इस तरह ज़्यादा शक्तिशाली पीढ़ी का विकास भी होता है। होम्योपैथिक के प्रति लोगों की यह भावना है कि होम्योपैथिक दवाओं का दूषित परिणाम होता है और शुरुआत में आरंभ में ये रोगों को बढ़ाती है, वैसे 100% यह बात सही नहीं है। यह बिल्कुल टोटल सेफ एंड क्योर दवाई है। वास्तव में ही होम्योपैथिक में एक ही दवा का उपचार करना चाहिए, लेकिन एक ही समय में रोगों द्वारा प्रस्तुत लक्षणों की जटिल रूपरेखा एक साथ एक समय में एक समान सिमिलिमम दवा का सुझाव देना कठिन बनती है, इसलिए दवाओं का संयोजन देना सामान्य बात हो गई है।
1: होम्योपैथी में रोगों का उपचार, डॉक्टर मोहम्मद अनवर हसन की यह पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी। मुख्य स्वर राजन मिश्र, साजन मिश्र और साथियों के हैं।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें

मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी, मुख्य स्वर राजन मिश्र, साजन मिश्र एवं साथियों की थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर।

अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में आज गायक कलाकार होंगे शैलेश कुमार। 7:20 पर कानून की बातें कार्यक्रम अंतर्गत आप सुनेंगे नूतन कुमारी की वार्ता, विषय होगा ग्राम न्यायालय। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी सीमा बनर्जी। 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे राजेश कुमार पंडित। 11 बजे कार्यक्रम होगा फोन इन आपकी पसंद, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12 बजे महिला श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग मदमात सारंग में। दिन के 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायक कलाकार होंगे उदय कुमार। 1:30 बजे संताली कार्यक्रम होगा जीवन झरना। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रपट से। 3 बजे प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम होगा। 3:20 पर आप सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायिका होंगी वीणा देवी। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार राय को। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 बजे कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 बजे रविवार्षिक संगीत सभा का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से करेंगे।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तेभ्यः परां रिष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रि क्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम् सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। सूचनाओं, जानकारियों एवं मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त विशाल आनंद। कीजिए स्वीकार हमारा अभिवादन। आज 6 जून है। कोई दिन विशेष आज के नाम से जुड़ा तो नहीं है, किंतु आज भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सर्वाधिक प्रतिभावान एथलेटिक गुरुबचन सिंह रंधावा को याद करने का दिन जरूर है, क्योंकि आज है इनका जन्मदिन। 6 जून सन 1939 को इनका जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के नांगली गांव में हुआ था। इनकी गणना भारत के सर्वाधिक

अधिक प्रतिभावान एथलीटों में की जाती है। वे एक जन्मजात श्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। खेलने से इनका एक पारिवारिक और पीढ़ीगत संबंध रहा है। इनके पिता भी अपने समय में पंजाब के जाने माने एथलीट रहे थे और अपने पिता के कारण ही ये एथलीट बने। अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण करने के कारण इन्होंने बाधा दौड़ को गंभीरता से लिया और ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में वे चैंपियन बन गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर के खालसा कॉलेज में हुई थी। अपने स्कूल एवं कॉलेज के दिनों से ही खेलों में इन्हें विशेष रुचि थी और अपनी रुचि के अनुसार ही अपनी मेहनत के बल पर इन्हें सफलता भी प्राप्त होने लगी थी। रंधावा पंजाब विश्वविद्यालय के एक स्टार एथलीट माने जाते थे और जिन्हें ऊंची कूद, भाला फेंक तथा डेकैथलॉन जैसे खेलों में महारत हासिल था। इन्हें भारतीय एथलेटिक्स का सबसे उम्दा ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत ना होगा। सन 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में गुरुवचन सिंह ने बाधा दौड़ में भाग लेकर 15 सेकेंड में दूरी को पार किया। यहां वे पांचवें स्थान पर रहे थे। दो वर्ष बाद ओलंपिक में दौड़ लगाकर पांचवां स्थान हासिल किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में 59.61 मीटर भाला फेंक कर वे पांचवें स्थान पर रहे। इसी बीच इन्होंने डिकैथलॉन प्रतियोगिता में भाग लिया और 6,739 अंक बनाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सन 1961 में ये ऐसे पहले एथलीट थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज इनकी जन्मतिथि पर हम इन्हें याद कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपसे बातें और भी होंगी। अभी आइए शुरू करते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रसरंग। और आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं शैलेश कुमार। इनके स्वर में आपको आरंभ में सुनवाते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

0: इस भजन के बाद NTES के आधार पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की अद्यतन सूचना से आपको रूबरू करा देते हैं। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस भागलपुर से खुलने का निर्धारित समय सुबह 7:50 है और यह ट्रेन अपने तय समय से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 7:45 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 8:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 8:05 है। यह ट्रेन अपने तय समय से 1:38 विलंब से आने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 8:37 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 9:00 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 9:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 9:35 है और यह ट्रेन अपने तय समय से चल रही है। गाड़ी संख्या 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय सुबह 10:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से खुलने का निर्धारित समय सुबह 11:55 है और यह ट्रेन अपने तय समय से रवाना होगी। NTES के आधार पर ये थी भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की अद्यतन सूचना। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
3: 8700001 4242।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे शैलेश कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 7:20 हुए हैं। कानून की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं नूतन कुमारी की पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है ग्राम न्यायालय।
1: सदियों से भारत के लोग आपसी प्रेम भाव व विश्वास से अपने बीच के विवाद को सुलझाते आ रहे हैं। समस्याएं चाहे जितनी हो जैसी हो, लोगों का प्रयास आपसी भाईचारे का ही रहा है। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन आज भी लोगों में आपस का विश्वास ही है। वही विश्वास भारत की न्याय व्यवस्था का मूल आधार है। भारत लगभग 120 करोड़ वाला देश है, जहाँ पर अधिकांश आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। अशिक्षित, परंपरावादी, रूढ़िवादी होने के कारण इसमें आपस में विवाद होते रहते हैं। प्राचीन परंपराओं के चलते गांव के मामले आप गांव में निपट जाते हैं। गांव में पंचायत व्यवस्था थी, पंच को परमेश्वर मानकर विवादों का निपटारा हो जाता था। पंच भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंतर नहीं रखते हुए जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को न्यायोचित फैसला देते थे। लेकिन गांव शहर से दूर होने के कारण वह न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। इस कारण न्याय तक आम व्यक्ति की पहुंच सरल बनाए जाने हेतु एवं साधारण जन स्तर पर सामान्य व्यक्ति को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराए जाने हेतु भारत के विविध आयोग ने ग्राम न्यायालय की स्थापना की, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के रूप में पारित हुआ। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा किसी जिले में माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक पंचायत या पंचायतों के समूह या ग्राम स्थापित करती है, जिसका मुख्यालय उस पंचायत में स्थित होती है। प्रत्येक न्यायालय के लिए न्याय अधिकारी के रूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी को नियुक्त किया जाता है। धारा 5 के अनुसार प्रत्येक ग्राम न्यायालय में 7 सदस्य होते हैं, जो जनपद पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से नाम निर्देशित किए जाते हैं, जिनमें से एक विधि का जानकार व्यक्ति होता है, जिसे न्याय मित्र कहते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के लिए एक एक स्थान ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहता है। एक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और भिन्न भिन्न वर्गों का चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाता है। धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम न्यायालय में जनपद पंचायत 7 सदस्यों का नाम निर्देशन सर्वसम्मति से किया जाता है। यदि जनपद पंचायत यथास्थित एक ग्राम न्यायालय की स्थापना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर यदि धारा 4 के अधीन सर्वसम्मति से नाम निर्देशित नहीं करती, ग्राम पंच न्यायालय में किसी पद के रिक्त होने की दशा में 60 दिन की अवधि के भीतर किसी सदस्य का नाम निर्देशित नहीं कर पाती, तब राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि धारा 5(1) के प्रावधानों के अधीन हुआ नाम निर्देशित करती है। ग्राम न्यायालय के माध्यम से लंबित पड़े मुकदमे को बगैर तारीख के शीघ्र से शीघ्र निस्तारित कराए जाते हैं तथा वाद कार्यों के घर के आसपास ही न्याय मिल सकता है। निर्धन को उनके घरों के नज़दीक न्याय प्रदान करना और उस स्थान पर पहुंचकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को त्वरित, वांछनीय और सुलभ न्याय प्रदान करना है। गांव के लोग गांव में ही न्याय प्राप्त कर सके और उन्हें न्याय पाने के लिए अपने दिन भर काम धंधा छोड़कर शहर के चक्कर नहीं लगाना पड़े तथा नागरिकों को उनके घरों तक न्याय उपलब्ध हो सके। किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। न्याय अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के अंदर दौरा करे, ऐसे स्थान पर विचारण या कार्यवाही संचालित करे जिसे वह उस स्थान से निकट समझते हों जहां पक्षकार निवास करते हों। ग्राम न्यायालय को मुख्यालय के बाहर चलित न्यायालय लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। ग्राम न्यायालय को सिविल और दांडिक दोनों प्रकरणों की अधिकारिता प्रदान की गई है। ग्राम न्यायालय में अधिनियम की अनुसूची एक के अनुसार दिए गए दांडिक प्रकरणों का है। दूसरी अनुसूची में दिए गए सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम न्यायालय के विचारण की शक्ति के अंतर्गत दांडिक मामलों का विचारण करते समय ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करती है और संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए मामले का निपटारा करती है। सरकार की तरफ से ग्राम न्यायालय में दांडिक मामलों का संचालन करने के लिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कार्य कर सकेंगे और न्यायालय की इजाज़त से परिवादी अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ग्राम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पक्षकार को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है तथा निर्णय की निःशुल्क प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाती है। निर्णय विचारण समाप्ति के 15 दिन के अंदर सुनाया जाता है। ग्राम न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कठोरता से लागू नहीं की जाएगी। साक्षियों के साक्ष्य विस्तार से न कर संक्षेप में लिपिबद्ध की जाती है। औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य को शपथ पत्र पर प्रकट किए जाने की अनुमति दी जाती है। ग्राम न्यायालय द्वारा प्रत्येक सिविल विवादों में विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 100 रुपये कोर्ट फीस के साथ दावा ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम न्यायालय के निर्णय, ग्राम न्यायालय सिविल वाद का निराकरण 6 माह की अवधि के अंदर किया जाता है और तर्क सुनने के ठीक 15 दिन के अंदर निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि 3 दिन के अंदर निःशुल्क दी जाती है। ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। ग्राम न्यायालय प्रथम 2 अवसर पर प्रयास करेगी कि प्रत्येक वाद या कार्यवाही समझौता से निपटाई जाए। पक्षकारों के बीच समझौता कराए जाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सुलहदारों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से की जाती है। ग्राम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य भाषाओं में से एक राजभाषा होगी। अगर व्यक्ति ग्राम न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो ग्राम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील ग्राम न्यायालय के किसी भी निर्णय दंडाज्ञा या आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में 30 दिन के अंदर कर सकता है। अपील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी। सिविल मामलों में यदि कोई आदेश पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया तो विवादित विषय वस्तु का मूल्य 1,000 रुपये से कम है तो वहां अपील नहीं होगी। यदि विवादित वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये से कम है तो विधि के प्रश्न पर अपील होगी। ग्राम न्यायालय पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेगी। अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए राजस्व अधिकारी सरकारी सेवक की सहायता प्राप्त कर सकती है। न्यायाधिकारी और कर्मचारी को लोक सेवक समझा जाएगा। प्रत्येक 6 माह में 1 बार ग्राम न्यायालय की वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार न्याय प्रणाली को मजबूत करने और जन स्तर तक न्याय पहुंचाने के लिए तथा समाज के व्यक्तियों को त्वरित और सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई।

ग्राम न्यायालय नूतन कुमारी की ये पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम कानून की बातें अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। 7:31 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म इज्जत से लिया है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। क्षमा करेंगे, लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें हैं। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब आज के दिन यानी 6 मई से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज के दिन सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया था। 1909 में अरविंदो को कोलकाता में अलीपुर बम मामले में आज के दिन रिहा किया गया था। आज के दिन सन 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। सन 1529 में आज के दिन घाघरा युद्ध में बाबर और महमूद लोदी के मध्य यह युद्ध आरंभ हुआ था। आज के दिन सन 1952 में प्रथम भारतीय लोकसभा का गठन एवं प्रथम लोकसभा

दिन यानी 6 मई से जुड़े हुए थे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म हिमालय की गोद में का एक नगमा। शब्द रचना इंदिबर के हैं और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के

0: संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले समाचार, जिन्हें समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठों पर जगह दी है, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कल से विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर 40 की स्पीड से दौड़ेंगे छोटे वाहन। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के सहारे रविवार सुबह 11 बजे से छोटे वाहनों का परिचालन शुरू होगा। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुल पर 3 शिफ्टों में जवान की विशेष तैनाती रहेगी। बेली ब्रिज चालू होने के बाद भी चलेंगी सरकारी नावें। विक्रमशिला सेतु पर नए बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू होने के बाद भी गंगा में सरकारी नावों का सफर थमेगा नहीं। गंगा में चल रही मुफ्त नाव और जहाज सेवा पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेंगी। पुरखों के नाम पुलिस ने रोपे 1200 पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में जिले भर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया है। दौड़, संगोष्ठी और पौधरोपण से दिया हरियाली का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रमंडल की ओर से हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर में पौधे लगाए। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। शहर में अब हर जगह लगेगी मंजूषा हटिया। संग्रहालय में नवग्रह वाटिका और चित्रों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक लोक चित्रकला मंजूषा कला के संरक्षण और कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भागलपुर संग्रहालय ने नई पहल शुरू की है। कला एवं संस्कृति विभाग, जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय और भागलपुर संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक माह के पहले रविवार को मंजूषा हटिया लगेगी। शुरुआत 7 जून से संग्रहालय परिसर में ही होगी। पुस्तक मेले में कविता, कहानी और गीतों की गूंज, कवि सम्मेलन आज। ततारपुर स्थित मुस्लिम हाई स्कूल में चल रहे 4 दिवसीय पुस्तक मेले के दूसरे दिन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की धूम रही। बच्चों और युवाओं ने कविता पाठ, कहानी सुनाओ तथा गायन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वशु चैंपियन शुरू, 22 जिलों के 250 खिलाड़ी दिखाएंगे दम।

खेल भवन सह व्यायामशाला में शुक्रवार से 16वीं बिहार राज्य जूनियर एवं जूनियर वुशु चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 22 जिलों की टीमों के करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये थे भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले समाचार, जिन्हें समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठों पर जगह दी थी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर एवं साथियों का गाया फिल्म पेंटर बाबू का ये गीत। गीतकार मनोज कुमार, संगीतकार हैं जगदीश खन्ना एवं उत्तम सिंह।

और अब चलते चलते एक नज़र मौसम सूचना पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर बिहार से प्राप्त मौसम सूचना के पूर्वानुमान में जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है। तो ये थी मौसम सूचना जो हमें प्राप्त हुई बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर बिहार से। और अब चलते चलते हम आपसे बस इतना आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी स्वच्छता की आदतों को बरकरार रखें, क्योंकि आपके सेहत का राज इसी में छुपा है। स्वयं भी स्वच्छ रहें, आसपास सफाई रखें। तो आज के कार्यक्रम से अब दीजिए हमें विदा। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का यह कार्यक्रम अब आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और फिर उर्दू खबरनामा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के

0: अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांति दूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में

0: कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Cripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7%

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार असलाहत के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाजन बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इशारा दिया कि भारत की काबिल तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवा हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है जो तवानाई के मैदान में खुद कफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजारे ख्याल करते हुए वजीर आजम ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकिली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वजीर आजम ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताजा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी क्योंकि बहुत सी बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा जुमरों को मरकजी सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात को एक दूसरे में जम कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्सुकात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपये पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपये तय कर दी है। रियासती सरकारी तमस्सुकात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपये और 1,64,242 करोड़ रुपये बितरती मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज ज़िराअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत ने किया है जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादिल इस्तेमाल को फरोग देना, मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीकों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
3: ज़िराअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत तक 17,800 से ज्यादा अब्देदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा किसानों को कीमियाई खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद मिट्टी की तवील मुद्दती जरखेजी और कीमियावी खादों पर ज्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद के खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनाल अभी भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है, जो तरक्याती तआवुन और आवाम के दरमियान रवाबित तजारत और सरमायाकारी तक मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मुस्तकम करने का ख्वाहां है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराह कुन बातें करके कौंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फौजों ने ईरान के उन 4 ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था, आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशन जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताज़ा तरीन हमला है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आ गया हुआ है, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के अफसर ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ्त को फंड्स के इंजमात को खत्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमेरिका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है, क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली जिलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दो मरतबा हराया है। गोवा के शहर मरगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने

0: साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शह सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एराना सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रगिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
4: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कहाँ चलती है, इधर तो
6: आओ। इधर आइए, इधर
7: इधर।
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222542, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
8: आकाशवाणी।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ही कार्रवाई की और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% की दर से बढ़ रही है। दमन में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस गति पर हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में भी भारत मजबूती से खड़ा है। इसका श्रेय देश की 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक प्रयास को जाता है। उन्होंने भरोसा दिया कि देश सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला बताया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम तय किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का शासनकाल देश में विश्वास, विकास और जन कल्याण का समय रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 12 साल बेमिसाल अभियान चलाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता प्रवेक्षण प्रणाली CGRM पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस एकीकृत व्यवस्था से लोगों को राज्य की योजनाओं की पूरी जानकारी

0: एक स्थान पर मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामले में राजस्व सह कानून को अधिकारी सोनी कुमारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 8 अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 32 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह सख्त है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्रों पर जाने के लिए सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को 35 जिलों के 331 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूदा खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सीमा पार से नकली नोट, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगानी होगी। गृहमंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि JEE एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि JEE एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उत्तरी भागों में बारिश हो रही है और कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे दरभंगा, अररिया, मधुबनी और सुपौल संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज सुबह

0: राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश भर में वज्रपात और तूफान पर अध्ययन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पटना केंद्र को वज्रपात, आंधी तूफान और मौसम प्रणालियों के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्री मानसून और आंधी तथा वज्रपात की घटनाएं बार बार होती हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर कल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है।
2: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। स्कूल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
1: राज्य में 12 घंटे बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये बंदी लागू रहेगी। नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण NBPDCL और SBPDCL के अनुसार ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। कंपनी ने लोगों से जरूरी बिल भुगतान और रिचार्ज पहले ही करने की अपील की है। पटना एम्स में कार्यरत कनीय प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को पुलिस ने एक महिला कर्मचारी और उसकी पुत्री से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पटना साइबर पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय की एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कनीय अभियंता धरनीधर राय को 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जनता दरबार में 68 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के नबीनगर ककरार में हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 18 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। सीवान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के सचिव ने उन्हें यह सम्मान दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने विधान परिषद के 8 MLC प्रत्याशी घोषित, जदयू ने 3 अति पिछड़ा तो भाजपा ने 2 को दिया मौका। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 50 लाख घरों में सरकार लगाएगी मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, 12 जुलाई को होंगी रिटायर्ड। प्रभात खबर ने लिखा है, खानसर पर FIR दर्ज, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:06 हुए हैं। पेश है सुगम फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। पहला गाना हमने फिल्म वीर से लिया है, राहत फतेह अली खान, सुजैन डिमिलो, युगल आवाजें हैं। गीत के बोल गुलजार के हैं और संगीत तैयार किया है साजिद वाजिद ने।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आप?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी थी। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव शहर पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
2: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
3: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
2: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
3: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
2: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 हुए हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत। ये पहला गाना है फिल्म गाइड से, लता मंगेशकर ने इसे गाया है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ.
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं. काट दिया.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे.
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
8: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है. 9:30 हुए हैं. सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज गायिका हैं सीमा बनर्जी. आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना.

AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में गायिका हैं सीमा बनर्जी। इनके स्वर में अब आपको सुनवाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक गीत रचना।

AIR at 90. सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं सरस्वती कुमार दीपक की गीत रचना। स्वर दे रही हैं सीमा बनर्जी।

सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आज गायिका थी सीमा बनर्जी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पहला गाना हमने फिल्म हावड़ा ब्रिज से लिया है। गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार ओपी नैयर, युगल आवाजें आशा भोसले एवं मोहम्मद रफी की है।

लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म छोटी बहन में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म नसीब का एक गीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर एवं साथियों का गाया फिल्म हम जोली का एक गीत सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर को ही अब आइए सुनते हैं फिल्म नया जमाना में।

ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित। आरंभ में इनके स्वर में आइए सुनते हैं एक शिव भजन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित। इनके स्वर में अब आइए सुनते हैं एक मनौन।

इस लोक भजन के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे राजेश कुमार पंडित। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन से नगमा, आवाज थी सुरेश वाडकर की, बोल लिखे थे गुलजार ने। अब सुनिए फिल्म बॉर्डर टू से ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और साथियों ने। गीतकार हैं मनोज मुंतसर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म दीवाना से, जिसे गाया है कुमार शानू ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए फिल्म हमरात से। स्वरबद्ध किया है महेंद्र कपूर ने, संगीत है रवि का और बोल लिखे हैं शाहिर ने।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। फिल्म है हीरा पन्ना, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है अनुरोध, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अब सुनिए फिल्म क्रांति से ये नगमा। आवाज़ है लता मंगेशकर और साथी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, 7 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ताकि दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा सके कि उनकी थाली तक पहुंचने वाला भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दूषित भोजन से बचाव, यानी असुरक्षित भोजन और पानी से डायरिया से लेकर कैंसर तक 200 से भी अधिक बीमारियाँ होती है। यह दिन सभी को खराब, संदूषित या मिलावटी खाने से होने वाले बीमारियों के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करता है। बहनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन ने पहली बार 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से इस दिन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सुरक्षित भोजन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडे में सबसे ऊपर रखना है। बहनों, प्रत्येक वर्ष इस दिवस की एक खास थीम होती है। इस वर्ष 2026 की थीम है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, जिसका आशय है असुरक्षित भोजन से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य बोझ को समझने और बीमारियों की रोकथाम के लिए विज्ञान आधारित समाधान लागू करने पर यह विषय केंद्रित है। बहनों, अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। मुझे याद है जरा जरा, भेंट वार्ताकार है डॉक्टर मीरा झा और भेंट करता है मनीषी शर्मा। तो चलिए सुनते हैं भेंट वार्ता, मुझे याद है जरा जरा। लेकिन बहनों, इससे पहले सुनते हैं ये खास बात।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने को है। इसी श्रृंखला में विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम आप श्रोताओं के लिए कभी

0: सुना नहीं है, जिनकी प्रतिभा के आप युगों तक कायल रहे हैं, जिनके मुख से वंदे मातरम सुन आपने दिन की शुरुआत की होगी, जिनके जय हिंद सुन अपने रात्रि के कार्यक्रमों को विराम दिया होगा, प्रतिदिन उनकी प्रस्तुति सुनते हुए आप विभोर हुए होंगे, जिन्होंने अपने सेवा के अनमोल 40 वर्ष आपकी सेवा करते हुए समर्पित किए। जी हाँ, आप हैं डॉक्टर मीरा झा। आज इनको हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि इनकी बातचीत, इनके इतने दिन के अनुभव हम आप तक पहुंचा सके। डॉक्टर मीरा झा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: तो मैम, आप इस सेवा में कब से आई, कैसे आई, शुरुआत इससे करते हैं।
1: जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। और मैं चर्चा उन दिनों की आपने जब पूछ ही दिया है, तो ये बहुत पुराना किस्सा जैसा अब तो लगता है सोचने पर। एक लंबा युग बीत गया, समय बीत गया, उस समय का वातावरण, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये वही समझ सकता है
0: जी
1: जिन्होंने इसको जिया होगा।
0: बिल्कुल।
1: इतनी संकीर्ण मनस्थिति
0: जी,
1: पुरुष प्रधान व्यवस्था की इतनी संकीर्ण मनस्थिति, जब महिलाएं बहुत आसानी से
0: जी
1: पढ़ लिख तो किसी तरह लेती थी, लेकिन आसानी से मनपसंद अपना काम करते हुए अपना वो लक्ष्य चुन लेना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। मैं ऐसी परिस्थिति की उपज हूँ और मैंने बहुत चुनौती से अपनी जिंदगी आरंभ की है। तो मैं बताऊँ, सन 1975 का, ये 73 का जमाना था जब मैं ग्रेजुएशन करके मैं पटने में बीएड कर रही थी
0: जी।
1: और अचानक वहीं पता चला कि आकाशवाणी भागलपुर में उद्घोषक की वैकेंसी निकली है। मुझे लगा मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा संयोग हुआ
0: जी
1: कि मुझे फॉर्म भी मिल गया
0: जी।
1: तो किस्सा कुछ ऐसा है कि मैं जहां रहती थी, जिस मोहल्ले में, उस मकान में, वो किराएदारों का मकान था, और उस मकान में एक नाटक कलाकार आया करते थे
0: जी,
1: वो भरत शर्मा नाम था उनका
0: जी।
1: तो भरत शर्मा से ऐसे ही चर्चा हुई, उन्होंने कहा, अरे आपकी आवाज़ तो बिल्कुल, आप संवाद ऐसे लगते हैं जैसे आप नाटक में क्यों नहीं भरती हैं। हमने कहा मुझे तो नहीं पता है कैसे क्या होता है। कहा ठीक है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा नाटक का फॉर्म। तो उससे भी पहले मैं बीएड जहाँ कर रही थी, मेरे साथ एक लड़की थी, साथ में काम करती थी, पढ़ रही थी, लायला जॉर्ज नाम था।
0: अच्छा।
1: तो हम लोग ऐसे ही साथी थे, तो साथ में आना जाना होता था। क्या हुआ, एक दिन कहती है कि सुनो, आज चलना है छज्जू बाग होकर के। क्यों भाई? तो अंग्रेजी ड्रामा का स्क्रिप्ट, उसका तमिल ड्रामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए मेरी आंटी को मिला हुआ था।
0: अच्छा।
1: सो उसे मुझे देने के लिए वहाँ जाना है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं दरअसल कुछ माह का बच्चा था।
0: जी, जी।
1: हाँ, वो ऐसी परिस्थिति थी मेरी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। कहा कि नहीं, तुमको चलना पड़ेगा
0: जी।
1: और जब गए तो एक ऐसी परिस्थिति रिक्शे वाले ने क्रिएट कर दी, कहा नहीं रुकेंगे, इतनी गर्मी है, ऐसा है वैसा, और मुझे जाना पड़ा अंदर। अंदर गए तो नाटक कलाकार, नाटक प्रोड्यूसर के कक्ष में जनार्दन राय जी थे बैठे हुए। उन्होंने, उन्हीं को गई थी वो देने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हारी दोस्त है? कहा हाँ। तो उन्होंने नाम पता पूछा, कहा नाटक से इंटरेस्ट रखती हो? हमने कहा रखते तो हैं, लेकिन कैसे करना है, लेकिन हाँ मुझे नहीं मालूम इसका। तो कहा ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, मैं फॉर्म देता हूँ, तुम फॉर्म भर के दो। और बता दिया कुछ कुछ और कैसे कैसे अभ्यास करना है, क्या कहा। हाँ, तो वो परिस्थिति बन गई। तो नाटक का होने ही वाला था, उन्होंने बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, और जब मैं गई ऑडिशन देने तो पता चला मैं पास भी कर गई। मतलब घर में जब चिट्ठी आई तो पता चला पास भी कर गई। तो वो जो भरत शर्मा, जिनका अभी नाम लिया मैंने, वो आया करते थे उस मकान में, ऊपर उनके एक मित्र थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसे आकाशवाणी में मैंने दिया था और मैं तो पास कर गई। तो कहा पास कर गया तो

0: क्या बढ़िया बात है, जाकर के मिलिए ना एक बार, उनको हो सकता है कोई भूमिका मिल जाए। मैं गई थी उनके पास, जैसे ही गई जाके बैठी थी कि अचानक उन्होंने कहा, सुनो तुम तो भागलपुर की हो, भागलपुर आकाशवाणी से वो वैकेंसी निकली हुई है। मैंने कहा नहीं मालूम मुझे, तो कहा हाँ निकली हुई है, तुम जरा पता करना और वहाँ से
1: जी
0: फॉर्म मंगवा लो। कि अचानक पीछे से आवाज़ आती है, प्रणाम चचा। एक थे
1: जी
0: गौरी शंकर, गौरी बाबू यहाँ अनाउंसर हुआ करते थे,
1: अच्छा
0: गौरी शंकर सिन्हा। संजोग से वो पीछे से खड़े थे और उन्होंने जो है वो फॉर्म, कह लीजिए ना फॉर्म मैं देता हूँ, और फॉर्म का 1 रुपया जो देना था
1: जी
0: मैंने 10 निकाल के दिए। तो कहा नहीं नहीं खुदरा नहीं है, तो 1 रुपया भी वो प्रोड्यूसर साहब नहीं दिए,
1: जी
0: उन्होंने गौरी शंकर
1: ये
0: सिन्हा जी
1: नियति
0: को।
1: कह सकते हैं इसको।
0: हाँ मैं ऐसा मानती हूँ कि
1: जी
0: भाग्य अंधे के हाथ की लाठी है,
1: बिल्कुल
0: लाठी आगे आगे चलती है और भाग्य पीछे पीछे
1: पीछे
0: चलता
1: चलता
0: है
1: है।
0: उसके पीछे। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं गई थी किस काम के लिए, कि ये देखिए आपने
1: जी
0: मुझे पास करने की चिट्ठी भेजी है, मैं
1: बिल्कुल
0: इसका क्या करूं। उन्होंने कहा अरे तुम्हारे यहाँ से वैकेंसी निकली है, पहले वहां दे दो। उसी समय फॉर्म मुझे मिल गया
1: जी सब
0: और मैंने भर के दिया। 2 एक दिन जा करके वहां पर कहा करके देख लेना स्टूडियो में कैसे क्या
1: जी
0: अभ्यास करते हैं,
1: जी
0: अनाउंसमेंट वगैरह का, कंसोल वगैरह का। और मैं गई, मैं आई, मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मेरे आकाशवाणी में आने की स्थिति है,
1: शुरुआत
0: शुरुआत है।
1: यहां से होगी।
0: हाँ लेकिन आई जब ज्वाइन करने तो घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो
1: जी
0: मुझे आसानी से, घर में परिवार में बहुत सारे लोग थे, ससुर जी थे, बहुत बड़े पंडित थे, ज्योतिषाचार्य थे,
1: जी
0: उनकी इच्छा नहीं थी कि उनकी बहू स्त्री पुरुषों के बीच में, पुरुषों के बीच में जाकर के इस तरह से काम करे। और वो बार बार कहते थे कि उनको कहिए जाके टीचर में वो देंगी, अप्लाई
1: देंगे
0: करेंगी,
1: एग्जाम
0: टीचर में भी मेरा हो चुका था, कहा
1: जी
0: अप्लाई करेंगी और वो टीचर में देंगी, मैं उनको वहाँ जाने दूंगा। मैंने सोचा घर में चारों तरफ तो टीचर का ही माहौल है, जिसको भी देख रही हूँ ये नए तरह की नौकरी है और मुझे इसको करना चाहिए।
1: जी
0: तो कई दिन ऐसे ही बीते, 19 तारीख को ज्वाइन करना था, खचपच खचपच किसी तरह से होते हवाते अंत में अपने देवर और भाई के साथ मैं आई ज्वाइन करने। मैंने
1: जी
0: ज्वाइन किया 22 तारीख को, 22 अगस्त,
1: आज भी
0: ये
1: तो
0: हाँ ये अगस्त महीना
1: जी
0: चल रहा है, ये
1: जी बिल्कुल
0: 22 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग दी। कुछ दिन तक तो चला, इसलिए कि वो मैं नई आई थी, तो
1: जी
0: आप काम सीखिए, ये लाइब्रेरी है यहाँ से सामग्री लीजिए, कैसे लगाते हैं क्या करते हैं काम धाम देखिए।
1: जी
0: और वो अंतिम दिन था अगस्त महीने का,
1: जी
0: कुछ तनख्वाह के वो शेष दिनों के कुछ वो पैसे मिले थे और मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी।
1: अच्छा
0: हाँ और उसी दिन गाड़ी खराब होनी थी, किसी तरह से बहुत तो बुरी परिस्थिति रही, किसी तरह
1: चुनौती
0: से
1: चुनौतियों का
0: शुरुआती।
1: सा जी
0: हाँ
1: चुनौती
0: हाँ
1: का
0: हाँ
1: सामना करना
0: हाँ
1: ही पड़ा
0: सामना
1: शुरुआत।
0: ही, और किसी तरह से वो ले गए, किसी तरह से प्रसारण समाप्त हुआ। मैं तो रोने लगी, मैं मेरा
1: जी
0: बच्चा छोटा है वहाँ, बच्चा छोटा छोड़ के मैं 3 महीने का आई हूँ और कैसे मैं क्या करूँगी। तो लोगों ने कहा कि यहीं रहना पड़ेगा, उसमें गाड़ी का तो इमरजेंसी का, मैं जिसमें ज्वाइन की थी वो समय इमरजेंसी का था,
1: अच्छा
0: वो आपातकाल का समय
1: जी
0: था और बहुत ही वातावरण, एक बहुत ही उद्वेलित वातावरण में हम लोग
1: जी
0: जी रहे थे, काम कर रहे थे, आते जाते। हाँ तो जब अपनी गाड़ी नहीं होती थी या अपनी गाड़ी खराब होती थी आकाशवाणी की,
1: जी
0: तो पुलिस स्टेशन की गाड़ी आती थी लेने के लिए।
1: अच्छा
0: हाँ वो घर तक छोड़ देती
1: जी
0: थी, अगर पुलिस स्टेशन की भी गाड़ी ना मिले तो जिनसे तेल लेते थे वो,
1: जी उस वक्त
0: हाँ
1: आकाशवाणी भागलपुर कहाँ हुआ करता था?
0: अलीगंज में हुआ करता
1: अलीगंज
0: था,
1: में हुआ
0: अलीगंज में
1: कर
0: हुआ करता
1: जी
0: था। अच्छा आज तो इतनी दुकानें खुल गई हैं, वाहन
1: जी
0: इतने चलने लगे हैं,
1: हाँ
0: यातायात के इतने साधन हैं कि पता नहीं आज के युग में अगर जीते तो हम लोगों को वो परिस्थिति नहीं होती। उस सुन सपाट सड़क पर, या तो आ रही है उधर से लंबी लंबी बसें आ रही हैं, नहीं तो उस सुन सपाट सड़क पर छोटे वाहन मिलते नहीं थे,
1: बिल्कुल भी नहीं
0: बिल्कुल नहीं मिलते थे। और या तो पैदल चलते हुए हम लोग अलीगंज आते थे,
1: जी
0: फिर वहाँ से कुछ मिल गया तो
1: जी
0: चढ़ लिए, रिक्शा मिला थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लिए, तो इस इतने वाहन ऑटो ऑटो तो
1: जी
0: चलते नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में
1: वहां से शुरुआत
0: वहाँ से शुरुआत हुई, रात में आए किस तरह से आए और कितना झमेला हुआ, और अंत में ऐसी परिस्थिति घर की हो गई कि हम लोग नौकरी छोड़, मैं नौकरी छोड़ करके मैं चली गई थी, वापस पटना चली गई थी, पटना ही।
1: अच्छा
0: हाँ
1: वहीं पे
0: लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे परिवार के कुछ ऐसे लोग मिले, कहा
1: जी
0: नहीं उनको जाके ज्वाइन करो, उनका ट्रांसफर लिवा लेंगे पटना।

0: पटना,
1: हाँ हस्बैंड मेरे पटना में थे लघु उद्योग सेवा संस्थान, तो किसी तरह से चला। उसके बाद जब मैं ज्वाइन किया मैंने
0: उस समय पर आकाशवाणी जैसे एक संस्था को से जुड़ना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं था।
1: बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। अच्छा, शहर में भीड़ कम होता था
0: जी,
1: शहर में सड़क पर चलते हुए लोगों को पहचानने वाली हर नजरें होती थी,
0: बिल्कुल,
1: खास करके ऐसी महिला जो सार्वजनिक क्षेत्र में आ चुकी हो, रेडियो पर जिनकी आवाज सुन रहे हो, तो उनको देखने वाले वो वही कुछ इस तरह का भाव रखने वाले बहुत लोग होते थे।
0: और सोच भी बड़ी संकीर्ण हुआ करती थी लोगों के अंदर इस प्रोफेशन को लेकर, ही एक सोच अलग,
1: बिल्कुल अलग सोच थी, और उन सबको झेलते हुए चलना। अच्छा, फिर किसी तरह से आकर के, खैर वो तो एक लंबी कथा है, इतनी लंबी मैं तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ किसी तरह से संभली स्थितियाँ
0: जी।
1: और अब मैं आती हूँ यहाँ के कार्यक्रमों पर
0: जी।
1: वो तो व्यक्तिगत थी, संभलते संभलते आखिर संभल ही
0: गई। उसके बाद एक वक्त के बाद आदमपुर में कब उसकी,
1: हाँ आदमपुर में तो बहुत बाद में, 86 में, मैं 75 की बात कर रही हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ 86 प्रसारण तो 88 से शुरू हुआ।
0: अच्छा,
1: हाँ लेकिन वो बनना शुरू हो गया था
0: जी।
1: और हम लोग बड़े हम प्रेमी जी कभी ओंकार जी भी बड़े इससे अरमान से आते थे, अरे हमारे शहर में स्टूडियो खुल रहा है, अब यहाँ नहीं आना पड़ेगा, इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। अब सोचिए परिस्थिति ऐसी होती थी कि गाड़ी अगर नहीं पहुंची या गाड़ी अगर छोड़ के चली गई, ड्राइवर की गलती हो, कोई कारण हो, ऐसी स्थिति में रिक्शा ढूंढिए, रिक्शा से धीरे धीरे धीरे किसी तरह से उसकी गति से चल के पहुंचिए, तो वो प्रसारण का समय थोड़ा सा तो आहत होता ही था। और ऐसी स्थिति में जो हुआ सो हुआ।
0: उस वक्त प्रसारण की क्या स्थिति रही?
1: हाँ
0: जी,
1: उस समय प्रसारण की स्थिति यही थी, जिस समय मैंने ज्वाइन किया था वो एक सभा होती थी।
0: अच्छा,
1: वो शाम की सभा थी। अच्छा। और वो ये रिले सेंटर था।
0: अच्छा,
1: रिले सेंटर था। तो अब अपना क्या होता था, अपने स्टाफ क्या करते थे
0: जी?
1: सभा 5:30 से शुरू हुई
0: जी,
1: और 5:30 में कुछ वृंदगान बोल के, सुगम संगीत टाइप।
0: अच्छा,
1: का
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अच्छा।
1: वृंदगान बोल करके कुछ इस तरह के गीत वीत बजे, फिर 6 से पहले स्थानीय सूचनाएं
0: जी,
1: है ना, कुछ और सूचना जो भी खोए हुए की सूचना, स्थानीय सूचनाएं में जो आ सकती हैं, हाँ वो आ जाती थी। और उसके बाद 6 बजे से फिर वो कार्यक्रम शुरू होता था, रिले का, न्यूज का, हाँ तो उसका अपना शेड्यूल था। इस तरह से पूरा एक, फिर 7:30 बजे
0: जी,
1: 7 बजे से ग्राम जगत शुरू होता था
0: जी,
1: सिर्फ ग्राम जगत।
0: अच्छा, उसमें कोई महिला कार्यक्रम,
1: सिर्फ ग्राम जगत।
0: अच्छा,
1: और उसमें ग्राम जगत में उस समय राठौर जी थे, महेश जी थे,
0: है
1: ना, ये लोग थे और चल रहा था।
0: तो उस वक्त बहुत सारे जो कार्यक्रम है जो आपके द्वारा भी शुरू किए गए,
1: हमारे द्वारा शुरू किए,
0: उनके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताती हूँ मैं, वही क्रम से बताती हूँ। तो ये 2 कार्यक्रम थे, इसके बाद वो पटना से न्यूज वगैरह आते, 10:30 में हम लोग समापन करते थे, चले जाते थे, या फिर कभी रेडियो संगीत सम्मेलन वगैरह हुआ तो 11:10 में खत्म हुआ और हम लोग सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग।
0: अच्छा,
1: हाँ, और बीच में वो सूचनाएं वगैरह जो कुछ
0: हुआ था। हाँ,
1: फिर हुआ ऐसा कि लिखा गया दिल्ली को, जहाँ श्रोता संघ बड़े जागृत थे उस समय।
0: अच्छा।
1: श्रोता संघों की स्थापना हो चुकी थी और बहुत सारे लोग थे, पूरन लाल सिंधी भी थे, बहुत स्वनाम धन्य और भी लोग थे
0: जी।
1: तो इन लोगों ने लिखना फिर शुरू किया दिल्ली को कि यहाँ कार्यक्रम दीजिए, कार्यक्रम। वो लोग कहते थे कि भाई फरमाइशी कार्यक्रम हो, कुछ हो इसकी। तो लिखा पढ़ी करते करते फिर वहां से गुंजन जी आ चुके थे, 75 में मैंने ज्वाइन किया तो गुंजन जी 74 में आ चुके थे।
0: अच्छा,
1: है ना, और वो भी इंतजार ही कर रहे थे, स्टाफ तो थे नहीं, तो मैं और मणिकांत जी एक इसमें आए।
0: अच्छा।
1: एक पैनल से आए थे
0: जी,
1: एक इंटरव्यू से। इससे पहले मात्र 3 अनाउंसर थे।
0: अच्छा।
1: विनोद बाला जी थे, चंद्रभूषण जी थे, गौरीशंकर सिन्हा थे, तो 2 हम लोग और बढ़े। तो मणिकांत जी को उन्होंने युवाणी के लिए,
0: अच्छा
1: हाँ मणिकांत जी युवाणी देखने लगे, फिर यदा कदा प्रसारण भी देखते थे
0: जी।
1: इस तरह से कार्यक्रम की योजना बनने लगी और गुंजन जी ने युवाणी कार्यक्रम 76 में आरंभ किया।
0: अच्छा,
1: हाँ 76 में आरंभ किया और सायंकालीन सभा में वो 5:30 का समय उन्होंने युवाणी का लिया।
0: अच्छा। हाँ, तो ये युवाणी कार्यक्रम
1: शुरुआत हुई।

0: उसके बाद सायंकालीन सभा में फिर हुआ कि भाई कंपेयरिंग बेस्ड, जैसे एक आदमी आते हैं ग्राम जगत करते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हुआ कि भाई ये अंग क्षेत्र है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से किया जाए कि लगे कि ग्रुप में, जैसे पटना से होता था, पटना से कार्यक्रम होता था, बुद्धन भाई, वो कौन कौन भाई बहन लोग थे ना, बहुत सारे, हाँ सुगिया बहन, सुगिया बहन तो रांची में थी, यहाँ और थी, मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। तो वो ग्रुप में होता था
1: जी,
0: एक बातचीत कंपेयरिंग के जरिए। तो हुआ कि यहाँ भी इसका कुछ एक प्रयोग किया जाए, प्रयोग करने में कि अब अगर हम दिन में 10 बजे आए हुए हैं, तो 7:30 तक रुकना है,
1: लंबा समय हो जाता है,
0: लंबा समय हो जाता था। वो प्रयोग हम लोगों ने किया जरूर। अब मणिकांत जी अंगिका में बोलते थे, मैं अंगिका में बोलती थी, राठौर जी वो मुझे उधर समस्तीपुर के थे वो बज्जिका में बोलते थे, हाँ महेश जी थे वो हिंदी में बोलते थे, मुखिया जी टाइप, हाँ। तो इस तरह से कुछ दिन चलाया, लेकिन ये जरा अव्यवस्थित हो गया क्योंकि इतना लंबा समय कोई दे नहीं सकता था और फिर असुविधा होने लगी
1: जी।
0: तो इस बात को फिर वहीं खत्म कर दिया गया, कहा ठीक है। लेकिन हाँ कार्यक्रम धीरे धीरे फिर दूसरी सभा फिर आरंभ हुई।
1: अच्छा,
0: जब दूसरी सभा आरंभ हुई तो लोगों का मनोबल और बढ़ा,
1: बढ़ा,
0: भाई फरमाइशी कार्यक्रम क्यों नहीं हो। फरमाइशी कार्यक्रम की भी अनुमति आई दिल्ली से
1: जी।
0: तो उन दिनों तो ये ऐसी टेलीफोनिक व्यवस्था थी, लेकिन वो पेपर ऊपर का काम ज्यादा होता था ना, तो फरमाइशी कार्यक्रम। और संयोग से बहुत सारे लोग थे फरमाइश मतलब फरमाइशी कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले, तो कहा नहीं कोई झमेला नहीं चाहिए, मीरा जी आप फरमाइशी करिए। महिला में एक थी, मीरा जी आप फरमाइशी।
1: उस वक्त आप महिला में सिर्फ एक हुआ करती थी।
0: हाँ, एक विनोद वाला जी थी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि उस समय ड्यूटी ऑफिसर नहीं होते थे।
1: अच्छा,
0: ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट नहीं थी।
1: अच्छा,
0: या थी तो खाली थी, चाहे जिन कारणों से हो। तो व्यवस्था ऐसी की गई थी कि जो सीनियर हमारे हैं, जैसे चंद्रभूषण जी, विनोद वाला जी, ये लोग ड्यूटी ऑफिसर का काम देखेंगे।
1: अच्छा,
0: और जो इधर 3 बचे हुए वो, अब मणिकांत जी अगर युवाणी देख रहे हैं तो इधर हम लोग जो हैं वो अनाउंसमेंट का काम देख रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो वो अगर अपने अपना काम देख रहे हैं तो बाकी कार्यक्रम तो ऐसे ही होना है, तो ठीक है आप करिए करिए। तो किया, और बहुत उत्साह श्रोताओं में
1: जी।
0: संचार का एकमात्र माध्यम था, और इस क्षेत्र का एकमात्र रेडियो स्टेशन था, और लोगों ने इतने उत्साह से स्वागत किया कि आप पत्रों का जब अंबार देखती या कोई देखे तो देख के लगता था कि छोटा मोटा सा पहाड़ यहाँ वहाँ, और सबकी इच्छा होती थी कि आप जो है हमारा भी नाम पढ़े जाए। एक कभी कभी तो स्थिति इतनी बदतर हो जाती थी कि हम नाम पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, नाम, चलो 10 चिट्ठी अगर एक में शामिल कर, मतलब गाना एक एक लाइन बजे खाली चिट्ठी, हाँ नाम ही नाम। तो इसमें भी शिकायत हुई भाई ऐसा नहीं करिए, थोड़ा सा मनोरंजन होता है मनोरंजन के लिए। तो फिर ऐसे में चुन चुन करके कुछ नाम या
1: जी,
0: जैसे भी हुआ
1: एडजस्ट किया, और हाँ
0: वो फरमाइशी का तो ये हाल हुआ। उसके बाद फिर महिलाओं का कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम में मैं आती हूँ। वो सबसे पहले शुरू हुआ घर आंगन, घर आंगन ग्रामीण में, चूंकि ग्राम जगत कार्यक्रम चल रहा था, तो हुआ कि इसका एक विंग जो है महिलाओं का भी कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो कैसे शुरू किया जाए, तो भाई वो अंगिका में शुरू किया जाए
1: जी।
0: तो आप लोग तो लोकल जो सेलेक्ट हुए तो लोकल डायलेक्ट के आधार पर, तो लोकल डायलेक्ट में तो ऐसा है मीरा जी आप ठीक है। तो उसके लिए मेरी बुधवार को जनरल ड्यूटी नहीं लग करके इसी घर आंगन की ड्यूटी लगती थी, और 12:30 बजे दिन से 7:30 बजे शाम तक, 7:30 बजे वो घर आंगन संध्या में जैसे ग्राम जगत होता है ना वैसे घर आंगन कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के बाद मुझे छुट्टी मिलती थी। और मैं
1: तो घर आंगन उस वक्त संध्या सभा में हुआ करता था,
0: संध्या नहीं नहीं पहले संध्या सभा में।
1: अच्छा,
0: हाँ उसके बाद हुआ कि नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा सप्ताह में एक दिन और होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: है ना, तो दिन में भी शुरू किया गया।
1: अच्छा,
0: नाना प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं कार्यक्रम, वहां से तो अनुमति आ गई। अब यहाँ की लोकल अथॉरिटी जो है वो तय करती थी कि कब कहाँ, अब महिलाओं का कार्यक्रम है, ग्रामीण महिलाएं दोपहर में ज्यादा फ्री होती हैं
1: जी,
0: तो वो उस समय उनको लोकगीत सुनाइए, उनके काम की बात सुनाइए उनको, क्षेत्रीय ग्रामीण इलाका है, तो वो भी प्रयोग रहा। उसके बाद घर आंगन के बाद आई बारी इसकी नारी लोक की,
1: जी
0: शहरी महिलाओं की।
1: नारी लोक की शुरुआत कब?
0: हाँ, नारी लोक की शुरुआत हुई है उसके 2 साल या 3 साल बाद, वो 77-78 वगैरह के आसपास।
1: अच्छा।
0: हाँ, समय तो लिया।
1: इन सभी की शुरुआत हो चुकी थी जब अलीगंज में।
0: हाँ, हाँ, सब वहीं से शुरुआत, फरमाइशी कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ, ये नारी लोक कार्यक्रम शुरू हुआ। अब उस समय ग्रामीण महिलाओं के उस कार्यक्रम का नाम था घोर एंगनो।
1: अच्छा।
0: हाँ, हाँ। और नारी लोक कार्यक्रम शुरू हुआ वो दोपहर में।
1: जी,
0: दोपहर में ठीक है, प्रस्तुति मुझे ही देनी थी, मैं जानती हूँ, तो ठीक है जो आए, जिनकी भी बुकिंग हो, कॉलेज से हो, कोई लड़की हो, कुछ हो, फिल्मी गीत हो,
1: जी
0: इस तरह से उनको लेकर के वो प्रस्तुति देना या उनकी रिकॉर्डिंग करके। अच्छा, स्टूडियो एक समस्या क्या थी, स्टूडियो एक है, उसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी होनी और प्रसारण भी चल रहा
1: उसी में होना।
0: हाँ, तो हमारे इंजीनियर लोग इतनी सुविधा से करते थे कि जब रिले आ रहा होता था तो उसको उधर से ले लेते थे ट्रांसमीटर से, और स्टूडियो खाली कर देते थे फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद उस समय रिकॉर्डिंग हो जाती थी। हाँ,
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर, 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अभी मैंने सुन रही थी पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता मुझे याद है जरा जरा का आंशिक भाग। अगले कार्यक्रम में इसका अगला भाग हम आपको सुनवाएंगे। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर मीरा झा और भेंट करता थी मनीषी शर्मा। और अब बहनों चलते चलते आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुर संगम। कलाकार हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। इनसे सुनिए राग मद मद सारंग।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुर संगम। कलाकार थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बज रहे हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन पाएंगे दोपहर 1:20 से। अभी वक्त है प्रादेशिक समाचार का, इसे हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी। परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे थोड़ी देर बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश कोर कमेटी से विमर्श करेंगे और शाम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
1: 2 दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, तो तजुर्बा और पार्टी का की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।
0: रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
2: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
0: गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 15 करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।
3: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा उसरी नदी का जो संरक्षण और ये पर्यावरण का जो उसमें देख रहे हैं उन्हें स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध, और उसमें एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 2 योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से चल रहा है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप

0: प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक के 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्यभर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। रामगढ़ जिले से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 4 टन आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 4-5 वर्षों से यह योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मेहनत से आज बेहतर फल मिल रहे हैं, जिसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
1: राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने 4-5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की जमीनों में आम लगाया। आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ जिले के गांव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, दुबई के मार्केट में भेजा गया है। हम लोग और भी एजेंसी से बात कर रहे हैं जो इसको आगे अन्य देशों में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: रांची के ऑड्री हाउस में जनगणना में पोस्ट कार्ड के ऐतिहासिक योगदान पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न दशकों की जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र तथा चित्रों द्वारा दर्शाया गया, जो डिजिटल युग से पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी को पारंपरिक संचार साधनों के ऐतिहासिक योगदान से अवगत कराती हैं।
2: 50-70 साल पहले हमारे पास क्या था, अखबार भी कम था, एकमात्र पोस्ट ऑफिस था, घर गांव में जाता था कुछ चीज, तो कोई चीज को सबके पास पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विस ही एक अच्छा जरिया था। तो हमारे सरकार पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड इसके ऊपर में लिख देते, देखो ये होने वाला है, आप आओ।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। खेल जगत में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। जापान अंडर-18 एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। झारखंड की संदीपा कुमारी बेस्ट प्लेयर चुनी गयी। घरेलू खेलों में झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। उधर पतरातू में 30 टीमों वाली भव्य छोटानागपुर सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी। परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो चुके हैं। अब सुनिए लोक रंग कार्यक्रम का शेष भाग। कलाकार हैं उदय कुमार, इनसे सुनिए झूमर।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे उदय कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है संताली कार्यक्रम जीवन झरना। कार्यक्रम से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र जीवन झरना अखड़ा आंजोम कान अपे दिसम पेड़ा इन देविसल मुर्मु जोहार आसो कनाई अपे सनाम होर नपाय रिजी मेना पे दिलाबुन तबे तिहिन दो हुडूर आर आंधी से चेटेर खोन चिकाबुन बंचा उना बाबतते मीट बार कथाबुन गलमरा नुओय नुआ मा बैसक आर झेट चांदु कानते अचका गे सितुंग मा ठाय ठाय आर अचका गे होय आंधी दा आर नोते हुडरू बिजली ते चेटेर को न्यूरहा उना को खोन बंचा लगी ते दो तुरंत गी उड़ा से बंद गड्डी कोरे बोलो हुयुआ अवड़ी पथवड़ी जहां मान तहां टंडी टिकूर से तारी बूटे कोरे इकाल तिगी बांग ताहन हुयुआ से बिजली तार मेढ़े से बिजली खुंटी सूर कोरे दो बांग ताहन हुयुआ चिदा जे उना कोरे दो चेटेर न्यूरहा रिया अड़ी जस्ती संभावना ताहन कना जुदी अचका गी बाहरे रे होय दा न्याम इमान लेम खान दो तबे आम दो अमा बनार जंगा पांती कते चुचुमुच से कुकुच ते दुड़ूब कते बोहो दो गुंठी तला रे उकु हुयुआ जहां से बाहरे चलाव इमान कन समय रे होय दा ए न्याम लेम खान दो जुदी उड़ा खोन बाहरे रे मिना मे खान बंचा लगी दो पक्का उड़ा लतार से गी उमुलो हुयुआ आर जुदी फाका जायगा रे मिनाम खान दो पुल भुग से कटीज दारी गजल रे उमुलो में हुडूर जोखे चीत को बांग चिकाय हुयुआ इकाल तिगी लटू दारी बुटे से बिजली खुंटी से मेढ़ेद समांग रे दो इकाल तिगी बांग ताहन हुयुआ जुदी आम खाली जायगा से टंडी टिकुर रे होय दा ए न्याम इमान लेम खान उन जोखे एकदम तिगी ओत रे दो बांग इतिजो हुयुआ अमा बनार जांगा तला रे बोहो उकु कते कुकुच ते दुड़ुबो में चेदा जे अमा होड़मो दो ओत रे कम संपर्क रे ताहेन ताम्मा आर जुदी दा समय गड्डा पुखरी से स्विंग पूल से दा लिकान जायगा रेम ताहेन खान उसराते बाहरे उडुको में जुदी दा हुडूर आंधी समय उड़ा से जहान भवन भित्री रेम ताहेन खान चीत को चिकाय बांग हुयुआ उंडे जहां तिनक गी बिजली रिया यंत्र को मिना आ उना को खोन संगी रे ताहेन हुयुआ जेलिका टीवी कंप्यूटर फ्रिज आर इमान तिया को आर बिजली ते चला सामान को दो ओप का हुयुआ लैंडलाइन फोन आर लैपटॉप को दो इकाल तिगी हुडूर दा जोखेज दो बांगी व्यवहार से लालचाड़ दो इकाल बांग हुयुआ खिड़की आर दुअर खोन दो संगी रे ताहेन हुयुआ आंधी तूफान जोखेज दो दुअर खिड़की आर बरामदा को दो एकदम बंदोगी दोहय हुयुआ आर निये हो ध्यान दोहय हुयुआ जे कांच खिड़की से मेढ़ेत आर पाइप सूर रे दो बांगी ताहेन हुयुआ कंक्रीट रिया पर्स रे दो इकाल तिगी बांग हुडूर समय दो बांग गितिजो हुयुआ दाग समय दो कंक्रीट रिया भीत से पर्स रिया संपर्क रे दो बांग ताहेन हुयुआ चेदा जे चेटेर दो उनका ते पारोम लड़ेगा उना ये ते उना सूर दो इकाल तिगी बांग तहन हुयु तुमा को प्राकृतिक आपदा खोन दो बचाव कते तहन हुयुआ नितबुन आंजमा मिटांग वार्ता वार्ता दो कना पृथ्वी रे बढ़ती कान सितुंग वार्ताकार दो कनाय मानोतान लक्ष्मी टुडू
1: मनवा जीवन दो

0: कुन लगावा 2010 रे भारत का कुन वर्ता रे CO2 गैस रे अंकुश लगाव लगी मेन किदाय मेन कान आयमा विकसित दिशम निय जवाबदेही खोन मुकरना को भारत 30 जून 2008 रे जलवायु परिवर्तन रिया अपनाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किदाय निय लक्ष्य इनाम लगी पर्यावरण और वन मंत्रालय सेन खोन हरित भारत परियोजनाएं शुरू की दाए नियोग सेन खोन बंजर 6 मिलियन हेक्टेयर रे तारी रहोई शुरू की दाए जलवायु परिवर्तन रे भारत सरकार आर यूके मिलो कते दूसरा वा संयुक्त वार्ता किन शुरू की दाए भारत पर्यावरण आर वन मंत्रालय आर यूके रेन मंत्रालय खाद आर ग्रामीण कार्य विभाग मिलो कते मित गोट त्रिवर्षीय अनुकूल कार्यक्रम रिया योजना किन बनाव की दा परियोजना रिया दूसरा क्रम 11 मई 2009 खोन किन शुरू की दा मनवा विकास रिया दौड़ रे अपनार पर्यावरण नेल लगी समय बनुआ नियो को हिड़िंग किदाय कि अपनी दो धरती रेन बांगी तहना विश्व रेन प्रत्येक मनवा हराम चाहे गिद्र अपनार पर्यावरण लगी जागरूक आर पर्यावरण अनुकूल मनवा जीवन विकसित रिया आवश्यकता मिना तुबे तोर नियो लट्टू समस्या रिया समाधान होई दाड़िया वर्तमान समय रे निय कथा रिया होयो जरूरी मेनाआ मानवा होते ते पर्यावरण संगे सामंजस्य संबंध अपनार जरूरा
1: अंजोम के तयाबुन मानोतान लक्ष्मी टुडुआ वार्ता निय तायोम अंजोम आबुन मीटांग ओनोड़ है ओनोड़ ये कनाय मानोतान कोर्नेलियुस किसको
2: सुनुम ससंग अजो सिदाय अगी लपड़ाम कु दो अन अरी अरी चली कु बंधाव अगु कदा उनागी तीन हो अबुकु तलारे मिना गया अन अरी अरी चली बंधाव साव सावते मी जुरीपरिया तनोल कु तल जोड़ावे कना उना सुनुम ससंग ओजो जोखे रिया सिरिंग से उन्हें हैं तीन आंजम अचुयत बुना सुनुम ससंग ओजो सिरिंग हल

आप सुन रहे थे संताली कार्यक्रम जीवन झरना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर वर्ष 2018 को न्यू ईयर

0: दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। इस अवसर पर IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत 18 जिलों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के जतकुदिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। एनडीए की हलीफ जमात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार कानून साज काउंसिल की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल बीजेपी ने 4 और जनता दल यू ने 4 उम्मीदवारों के नाम की फहरिस्त जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए 2 साल इंतखाबात जबकि 1 सीट

0: के लिए ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हलाकत और असलहा एक्ट के मामले में कसूरवार करार दिया है। अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी अहलिया रेनू सिंह समेत दीगर मुलजमीन को बरी कर दिया है। ये मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान जॉय फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का इल्ज़ाम राजू कुमार सिंह पर लगा था। ज़राअत और किसान फलाह वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में अब तक 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ मुहिम से जुड़ चुके हैं। वजारत के मुताबिक मुहिम के तहत अब तक 17,800 से ज़्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान मुस्तफीज हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम और 8,850 से ज़्यादा अमली मुजाहरा भी किया गया। मुहिम का मकसद मिट्टी की जरखेज़ी बनाए रखना, कीमियाई खाद पर इन्हिसार कम करना और मजबूत खेती को फ़रोग देना है। CBSE ने दोबारा इवेल्युएशन के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तलबा अब एतवार के निसफ शब तक अपनी दरख्वास्त जमा कर सकेंगे। इससे पहले दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 6 जून तय थी। CBSE ने सभी अहल तलबा से बढ़ी हुई तारीख का ध्यान रखते हुए मुकर्रा मुद्दत के अंदर दरख्वास्त का अमल पूरा करने की अपील की है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में मुंतखब किए गए सबसे नौजवान क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़ के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के छठे मरहले में रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों से मुंतखब 50 तलबा तालिबात को पंजाब के तालीमी और सकाफती दौरे के लिए रवाना किया गया। IIT पटना में मुनक़द फ्लैग ऑफ तकरीब में गन्ना सनत के वज़ीर संजय कुमार ने तलबा को रवाना किया। इस मौके पर IIT पटना के डायरेक्टर TN सिंह ने कहा कि युवा संगम कौमी एकता को मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम साबित हो रहा है। रियासत के कई हिस्सों में देर रात हल्की से औसत बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत 18 ज़िलों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को सख्त गर्मी से निजात मिली है। मुंगेर से हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि ज़िला के लरैया टाण थाना हलका के जतकुटिया गांव में बर्फबारी की जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई। इस बीच महकमा मौसमियात ने आज रियासत के जनूबी हिस्सों और शमाल मशरक़ी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही खानदान की दो औरतों की मौत हो गई। दोनों दरभंगा ज़िले की रहने वाली थीं। अररिया ज़िले के अलग अलग थाना इलाके में पुलिस ने छापामारी करके कसीर मकदार में शराब और ममनुआ कप सिरप के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 हो रहे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30, माफ कीजिएगा 2:15 होने ही वाले हैं। वक्त हो चला है समाचार का, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री

0: परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
5: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल

0: अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए। फिल्म आजा नचले से आवाज़ है सुनिधि चौहान की, संगीतकार हैं सलीम सुलेमान और गीत की रचना की है पीयूष मिश्रा ने।

0: AIR@90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए, बजरंग फिल्म बजरंगी भाईजान से, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने, गीतकार है नीलेश मिश्रा और इसकी धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
1: करो,
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय।
5: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं आप सुनिए फिल्म मिशन मजनू से ये गीत। स्वर है राज बर्मन का, गीतकार हैं रोहित शर्मा और संगीत है राघव सचार का।

अब सुनिए श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत। फिल्म है सिंग इज किंग, बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म रिफ्यूजी से। स्वर है सोनू निगम और अलका याग्निक का। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब सुनिए प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं रमेश रावत, इनसे सुनिए लोकगीत।

90. आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। अब सुनिए कुमारी सरस कॉल की आवाज में ये लोकगीत।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। अब सुनिए कलाकार कल्पना एस वर्मन की आवाज में लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। अब सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समोसर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:25 होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 हम पुनः उपस्थित होंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले शेष कार्यक्रमों के साथ।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
0: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा। कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور باعث سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک،
1: ہاں، کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
2: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
1: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
2: جی، عالم پناہ،
1: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
2: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
1: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
2: جو حکم والی جا۔
3: تسلیم،
1: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
3: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
1: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
3: جی یور میجسٹی۔
1: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
3: عالم پناہ، عالم پناہ،
1: بالکل ٹھیک۔ تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو۔
3: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں۔ تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
1: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے۔
3: او، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت رحم دل ہیں، ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے۔
1: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
3: او تھینک یو، نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا۔
1: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا۔
3: نو، نہیں نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے، ہم تو آزاد گھومنے چاہتے، ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا۔
1: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
3: ओ जयपाना, आप कितने अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
3: ओ, ओ शुक्रिया आलिम्पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
4: जी हां जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब के नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
4: जी हां आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
4: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
4: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
4: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
4: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
4: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में है, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
4: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
4: बेशक आलमपनाह, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो। बोलो
4: आली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमिली से है, क्या हुआ?
4: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
4: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
4: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
4: जी हां आली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
4: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ, नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
4: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुरीदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
4: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
4: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
5: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? अब फौरन भेजो।
5: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है, वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
4: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है, उस बदसाद को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसाद?
4: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं, फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
4: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फेरिश्ते मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
2: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
4: ओह, जहां बना ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
2: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
4: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
2: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्तफाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खान किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आले कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहनशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जाह वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खां हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में, अब ये जग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमर खान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। इसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है, और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए। जी,
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा

0: वाला फील था, किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं, था नहीं। और यू नो लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस के वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुलाओ बुलाओ इसको, बुलाओ उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि टेरेस आए, अभी टेरेस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल, तो मैं रहता था अंधेरी में। लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल, हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था, और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन हाँ। की तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनी एम, ओके,
1: बोनी एम का, ओके,
0: बोनी एम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, हाँ। अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी, तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी रहता, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं, तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में, तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। लगता है, तब मेरी आवाज़ यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वॉज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब है
0: लेकिन हमारे
1: लिए कुछ तो... भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर उसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो है ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाए और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: पेरेंट्स, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक बड़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
1: हाँ।
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई। तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: लेकिन एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे?
1: अभी मेरे प्लेलिस्ट
0: किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, टिकटिक क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मेरा मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहां जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले

0: जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं, और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने के, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं, क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है, वो वाला डांस सेक्शन,
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया, और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना, और उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोषी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है,
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती है,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो, इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला, क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज, डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत, I think was only 24 years. He says, मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिनसी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने

0: ठीक है, अपने आप को सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARMM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता रहे कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब, मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और
0: बड़े
1: इतनी बड़ी कला, बड़ी फिल्म थी,
0: कलाकार
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी के सहयोग एचआर पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाश

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त विकेश, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा की ओर। आज की चर्चा का विषय है माय भारत युवा सम्मेलन। हमारे वीकली सेगमेंट में हमने शामिल किया है गीतों भरी कहानी के सेगमेंट को, जिसमें आप सुनेंगे कहानी जिसका शीर्षक होगा समर्पण। साथियों, हर रोज़ की भांति हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया और फन फैक्ट में आपको रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ी रोचक तथ्य भी बतलाएंगे। हमारे डेली सेगमेंट करंट अफेयर्स में आपको देश विदेश की खबरों से भी अवगत करवाएंगे। दोस्तों, फिल्म संगीत कहानी के शीर्षक समर्पण पर आधारित होंगे। आइए अब हम अपनी चर्चा के विषय की ओर बढ़ते हैं। विषय है माय भारत युवा सम्मेलन। साथियों, माय भारत युवा सम्मेलन 2047 के विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक भूमिका निभा रहा है। यह सम्मेलन आज यानी 6 जून 2026 को दोपहर 12 बजे त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया गया। साथियों, इस सम्मेलन में लगभग देश भर से 6000 से अधिक युवा प्रतिभागी एक साथ सम्मिलित हुए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात नेता, विशिष्ट अतिथि और युवा व्यक्तित्व उपस्थित होंगे, जो कल के भारत के निर्माताओं को आज के उपलब्धि हासिल करने वालों के साथ साथ एक साथ होंगे, जिससे राष्ट्र विकास और सार्वजनिक नेतृत्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें साथियों, इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद होगा, जिनमें भारत के सर्वश्रेष्ठ धावक गुरिंदर वीर सिंह, जो 100 मीटर दौड़ में शामिल और वर्तमान राष्ट्र रिकॉर्ड धारक हैं, उद्यमी यमन अमन गुप्ता, बोर्ड के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत, UPSC उत्तीर्ण और

0: उपलब्धियों और परिवर्तनकारी क्षमता का उत्सव मनाएगा। इसी के साथ चर्चा के विषय में बस इतना ही। बात करेंगे किसी खास विषय पर अगले एपिसोड में। अब बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर। आज का डेली ट्रिविया में सवाल है, आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन किस डिवीजन में आता है? इस सवाल का सही जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में हम बता देंगे। साथियों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है साथियों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं हमारे वीकली सेगमेंट गीतों भरी कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है समर्पण। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही रवि को वर्दी पहनने का शौक था। जब भी वह किसी पुलिसकर्मी को देखता उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती। 12वीं पास करने के बाद उसने ठान लिया कि वह पुलिस में भर्ती होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी और गांव के लोगों के ताने उसके साथ साथ चलते थे। तुमसे नहीं होगा, कोई और काम देखो, लोग अक्सर कहते। लेकिन रवि के मन में एक ही शब्द गूंजता था, वो था समर्पण।

हर सुबह 4 बजे उठकर रवि दौड़ने निकल जाता। सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अभ्यास नहीं छोड़ता। दिन में खेत में पिता का हाथ बटाता और रात को भर्ती परीक्षा की तैयारी करता। पहली बार भर्ती निकली तो वह दौड़ में कुछ सेकंड से पीछे रह गया, उसका चयन नहीं हुआ। उस रात वह बहुत रोया, उसे लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों। लेकिन अगले दिन उसने फिर अपने जूते पहने और मैदान पहुंच गया। उसने खुद से कहा, हार केवल तब होती है जब हम प्रयास छोड़ देते हैं।

एक साल बाद फिर भर्ती आई। इस बार रवि पहले से अधिक तैयार था। उसने लिखित परीक्षा पास कर ली। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा बाकी थी। दौड़ शुरू हुई। रवि पूरी ताकत से दौड़ रहा था। आधी दूरी पार करते ही उसके पैरों में दर्द होने लगा। सांसें तेज हो गई। कई उम्मीदवार पीछे छूट चुके थे, लेकिन कुछ उससे आगे थे। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, माँ की उम्मीदें याद आई। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और अंतिम क्षणों में लक्ष्य रख पार कर ली। जब परिणाम आया, उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रवि पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर घर लौटा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, यह वर्दी मेरी नहीं, आपके त्याग और विश्वास की जीत है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता प्रतिभा से नहीं, समर्पण से मिलती है। उस दिन रवि को समझ आया कि समर्पण केवल किसी लक्ष्य को पाने का नाम नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी अपने सपनों के प्रति अडिग रहने का नाम है। साथियों, ये थी कहानी समर्पण। इस कहानी में आपने तीन सॉन्ग सुने। पहला सॉन्ग फिल्म लक्ष्य से था, गायक थे शंकर महादेवन। दूसरा सॉन्ग आपने सुना फिल्म लगान से, गायक थे सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण और श्रीनिवास। तीसरा सॉन्ग आपने सुना फिल्म संजू से, गायक थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल। अब बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट करंट अफेयर्स की ओर। अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में 3 वर्ष के लिए भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ डेली सेगमेंट करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आशा करता हूँ यह आपके प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर। आज के डेली ट्रिविया में हमने आपसे सवाल पूछा था, आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन किस डिवीजन में आता है। इस सवाल का सही जवाब है समाचार सेवा प्रभाग, जिसे हम न्यूज सर्विसेज डिवीजन यानी NSD के नाम से भी जानते हैं।

साथियों, डेली ट्रिविया के सेगमेंट में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है हमारे डेली सेगमेंट फन फैक्ट की ओर बढ़ने का। आज का फन फैक्ट है, क्या आप जानते हैं आकाशवाणी का मोटो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है? दोस्तों, इसी के साथ डेली सेगमेंट में बस इतना ही। आशा करता हूँ हमारे डेली सेगमेंट में आपने रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ी खबरों को बखूबी समझा और जाना। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। हमें आपके मेल और लेटर्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी अब कर रही है इशारा, अब इस शो को रैपअप करने का वक्त आ गया है। चलते चलते हमेशा की तरह फिर से वही गुजारिश, हंसते मुस्कुराते रहिए और गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी, युव वाणी। दीजिए अपने रेडियो दोस्त विकेश को इजाज़त। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। 5:30 हो चुके हैं और पेश है फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए केसरी फिल्म में बी प्राक को। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं अर्को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

कुमार शानू और संजीवनी की आवाज़ में सुनिए करीब फिल्म का गीत। रचना है राहत इंदौरी की और संगीत है अनु मलिक का।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमार सानू एवं अलका याग्निक और साथियों को। गीत है इंदिवर का और संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है कोयला।

वक्त की कमी के कारण हम आपको यह गीत पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे वीणा देवी से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुरेंद्र कुमार राय को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रोजाना की तरह आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्म संगीत। 9:30 पर दिल्ली से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र के माध्यम से। कलाकार होंगे ऋषिकेश गगुर्दे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। 5:48 पर 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुन पाएंगे। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश कुमार विजय की वार्ता आप सुनेंगे, प्रातःकाल सैर के लाभ। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे सुलेखा कुमारी से। हिंदी वार्ता के अंतर्गत मानव अधिकारों की प्रासंगिकता इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ता सुजीत कुमार सिंह से। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन।

कल के कार्यक्रमों में फिल्म गीतों का समय याद रखेंगे, सुबह 9:06 पर, 11:00, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे गोपाल भगत से। विज्ञानवाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं 12:00। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम के कलाकार होंगे बलराम दास मिश्र, इनसे आप सुनेंगे तबला वादन। 1:00 लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे सच्चिदानंद सिंह से। 1:30 पर अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण आप सुन पाएंगे, इसमें आप सुनेंगे सत्यनारायण मंडल की कहानी महादानी। 3:00 सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ आप सुन पाएंगे। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5:00 तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे।

कल के कार्यक्रमों में कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। बासुकी प्रसाद यादव से लोकगीत सुनेंगे। 7:10 पर 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में विजय कुमार दास को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुनेंगे। 9:30 पर दिल्ली से सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। और साथ ही 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे। दिल्ली केंद्र के माध्यम से कलाकार होंगी विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी, इनसे आप सुनेंगे कर्नाटक वोकल। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है श्रोताओं आपका इस प्यारे कार्यक्रम में। सबको आज किशन का नमस्कार,
1: सबका विदो के भी नमस्कार, साथ साथ किशन भाई तोरु नमस्कार।
0: नमस्कार विदो भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार हैं?
1: सब किस कुशल मंगल छे किशन भाई, बड़ा बढ़िया सुनाबो।
0: जी जी खूब बढ़िया विदो भाई। कहते हैं जान है तो जहान है, कहने का मतलब है कि दिल दिमाग सेहत से यदि आप चुस्त दुरुस्त हैं तो निश्चित रूप से एक प्रगतिशील व्यक्तित्व का होना, प्रगतिशील जीवन का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, चाहे आपके मार्ग जो भी हों। तो हर हाल में हमारा प्रयास होना चाहिए। वैसे जीवन की जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं विदो भाई, भोजन, वस्त्र और आवास, इसके प्राप्ति के लिए हम तरह तरह के रास्ते से गुजरते हैं। और ऐसे परिस्थिति में जो साधन संसाधन हमारे पास हैं विदो भाई, उसी के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास हम करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे में निश्चित रूप से सबसे पहले आवश्यकता ये है कि आप शारीरिक रूप से बेहद स्वस्थ रहें, तभी आप ये तमाम क्रियाकलाप बेहतर ढंग से कर पाएंगे विदो भाई।
1: हाँ, कहलो ब्लॉग भी गेलो छे कि स्वास्थ्य ही धन छके।
0: बिल्कुल,
1: स्वास्थ्य संबंधी बात के बारे में जब चर्चा हुई छे तो केंद्र सरकार के एक योजना आयुष्मान भारत दिमाग में
0: जी जी विदो भाई, सरकार के द्वारा सिर्फ एक ही कार्यक्रम नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि
1: हाँ।
0: समय समय पर ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं और आने वाले दिनों में भी आने वाले हैं, चलाए जाएंगे। और जो भी कार्यक्रम आते हैं वो समाज की बेहतरी करिए, और सरकार का प्रयास होता है कि वो जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस योजना का लाभ वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँचे। खास करके ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, बीपीएल

कार्डधारी हैं वहां तक ये निश्चित रूप से सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। विधवा आयुष्मान भारत निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य संबंधी

0: हमारे साथ साथ श्रोताओं को भी बताइए।
1: हाँ, आयुष्मान भारत भारत सरकार के सबसे बड़ो स्वास्थ्य बीमा योजना छके
0: जी, जी।
1: जे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का सूचीबद्ध करी के अस्पताल में प्रति परिवार हर वर्ष 5 लाख रुपया तक के कैशलेस इलाज यानी मुफ्त उपचार प्रदान करे छे।
0: बड़ा अच्छा, 5 लाख रुपये तक का कैशलेस।
1: हाँ,
0: मैंने जेब में टका है नहीं है।
1: हाँ,
0: लेकिन यदि आपका आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपया के आप मालिक हैं।
1: हाँ, यानी 5 लाख रुपया तक
0: अच्छा,
1: के मुफ्त उपचार
0: जी।
1: आयुष्मान भारत योजना
0: जी
1: पूरे भारत में लागू कर लगलो छे
0: जी।
1: आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वित्तीय सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना छे
0: जी। गर्भावस्था में देखिये स्वास्थ्य की देखभाल हो या बच्चे हैं उसमें समय समय पर क्या टीकाकरण ये सब लगना है और उनके बेहतर से बेहतर क्या स्वास्थ्य हो सकते हैं, ये सब तमाम बातों की जानकारी या स्वास्थ्य सेवा आप इस माध्यम से ले सकते हैं।
1: हाँ, लेकिन एक वास्ते सबसे पहले जानना चाहिए की पात्रता छे
0: जी जी,
1: केकरा है योजना के लाभ मिले पारे छे
0: जी जी।
1: तो लाभार्थी के पहचान सामाजिक आर्थिक जाति गणना डेटाबेस के माध्यम से करलो जाय छे।
0: बिल्कुल,
1: गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के परिवार पात्र हुई छे
0: जी।
1: भारत में रहे वाला भारतीय नागरिक भी होना चाहिए
0: जी।
1: सरकार द्वारा निर्धारित आय आरु सामाजिक आर्थिक मानदंड का पूरा करना अनिवार्य छे
0: जी।
1: आ एकरा वास्ते कुछ दस्तावेज की आवश्यकता छे, जना कि आधार कार्ड या कोई मान्य सरकार द्वारा जारी आईडी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक जाति गणना प्रमाण पत्र, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज जो लागू हुआ तो उकरा होना चाहिए
0: जी। और कभी कोई दिक्कत हो विदो भाई, हम हाँ। अपने श्रोता बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि आप अपने मुखिया जी से पूछिए, प्रखंड
1: हाँ।
0: स्तर पर जो अधिकारी हैं आप उनके पास जाइए, आग्रह करेंगे कि ये एक भारत सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, योजना है, आप इस योजना को समझिए और बेहतर ढंग से इसका उपयोग में लाएं, तभी इस योजना का वास्तविक रूप से साकार हो सकेगा और निश्चित रूप से योजना से लाभ उठाएंगे तो आप भी खुशहाल रहेंगे।
1: हाँ,
0: आज के कार्यक्रम में और भी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे विदो भाई।
1: हाँ,
0: कार्यक्रम की शुरुआत एक बढ़िया सा लोक भजन पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: विधवा प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें उपहार में दिए हैं, जिससे
1: हाँ
0: कि हमारा जनजीवन बहुत ही सरल हो जाता है, बल्कि हमारी निर्भरता उन प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों के ऊपर आश्रित है। बहुत सारे साधन हैं, संसाधन हैं, जिसकी कि हम किसी भी रूप में उसका मूल्य अदा नहीं कर सकते हैं। इतना अद्भुत चीज़ें प्रकृति ने मुझे उपहार स्वरूप प्रदान की हैं। ये विशाल मिट्टी, अर्थ, जमीन जो कहते हैं, विशाल झरने, विशाल समंदर, नदियाँ, जो कि बिल्कुल प्रकृति ने क्या कहते हैं, खुले हाथ से प्रदान किए हैं, मानव मानवता की रक्षा के लिए कहें, या मानव को गुजर बसर करने, या इस धरातल पर बेहतर ढंग से जीवन यापन। जरा मिट्टी की ही कल्पना करें, अनमोल धरोहर है, अनमोल प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, उसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। बहुत सारी बातें हैं। प्रकृति में संगीत भी एक बहुत ही बेहतरीन, जी, बहुत ही बेहतरीन प्रदत्त चीज़ें हैं उपहार स्वरूप। जब कभी कहीं भी संगीत किसी भी रूप में हो, विदो भाई, जब बजना शुरू होता है तो दिल दिमाग, जो आत्मा है अंदर से, हृदय से, अनायास ही उस संगीत पर, उस मधुर धुन के ऊपर वो थिरकना शुरू हो जाते हैं। इसे साफ आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन में संगीत का कितना अहम स्थान है। चलिए, प्रकृति और संगीत क्या कुछ इस विषय पर सुनील कुमार तिवारी अपनी बात रखते हैं, हम लोग भी जरा इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना, हम लोग गीत संगीत का कुछ और आनंद ले विदो भाई अपने किसान भाइयों के साथ। वैसे गीत के अलग अलग विधा हैं हमारे आंचलिक क्षेत्र में। यदि हम ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो कजरी हो, पूर्वी हो, मंडप के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हो, लगन हो, सोहर हो, जो भी हो, तो वो बड़े ही कर्णप्रिय लगते हैं। बल्कि सामाजिक वातावरण में जो उसकी सुंदरता है, उस गीत संगीत की जो मनमोहकता है, वो

0: सुनते ही बनती है। बढ़िया से झूमर एक बार फिर अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

वाह, इतना सुंदर झूमर सुनी का मौन एकदम पूरा तरीका से झूमी हुले गिले। और यही हमरा सनिक क्षेत्र के विशेषता छके कि झूमर जे छे गीत संगीत जे छे उ दे छे मन के पूरी तरह से आह्लादित करी दे छे। तो अब कुछ एक बढ़िया संदेश सुन लागबा श्रोता के, फेरू से एक झूमर ही सुनवाई छे।

0: बाह ई झूमर से तो मन पूरी तरह से झूमर लगले आर आब समय होलो छे खेती बाड़ी के आ खेती बाड़ी के वास्ते जे छे कुछ मौसम संबंधी सूचना जानना बहुत आवश्यक छे। यही वास्ते श्रोता लोग का पहिना एक पहिना मौसम संबंधी सूचना सुनाई छे। पूर्वानुमान के अवधि 6 से 10 जून के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के आरु हल्का वर्षा हो के अनुमान छे। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहे के संभावना छे।
1: आज हम बात करेंगे भागलपुर प्रक्षेत्र में खेतों में फूलों की खेती की संभावनाओं के बारे में। प्रायः फूलों का प्रयोग उद्यान, गृहवाटिका तथा विशिष्ट स्थानों को सजाने के लिए किया जाता है। पुष्प को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहले वे फूल होते हैं जिन्हें डंडी सहित उगाया जाता है। ऐसे फूलों को कर्तित फूल या कट फ्लावर कहा जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी में वे फूल आते हैं जिन्हें डंडी रहित या डंडी के बिना उगाया जाता है। ऐसे फूलों को विछिन्न या लूज फ्लावर कहा जाता है। अगर हम मौसम के आधार पर फूलों को बांटें, तो फूलों को हम 3 बार उगा सकते हैं। पहले वे फूल होते हैं जिन्हें जाड़ों में उगाया जाता है। इनमें से प्रमुख फूल हैं एस्टर, साल्विया, कैलेंडुला, डहेलिया, पेंजी, डेजी, डॉग फ्लावर, बर्बीना, फ्लॉक्स। दूसरी एवं तीसरी श्रेणी में वे मौसमी फूल आते हैं जिन्हें गर्मी एवं वर्षा के मौसम में उगाया जाता है। इनमें प्रमुख हैं कोचिया, जीनिया, बालसम, गॉम्फ्रिना, गिलार्डिया, सिलोशिया, पोर्चुला का। जाड़े वाले मौसमी फूलों की पौध सितंबर अक्टूबर माह में तैयार कर रोप दी जाती है तथा इन पर फरवरी से मार्च में फूल आने लगते हैं, जबकि गर्मी एवं वर्षा वाले फूलों के बीजों की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है तथा रोपाई अप्रैल में करने से मई माह में ही 1 महीने के भीतर ही फूल आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष भर फूलों की व्यावसायिक खेती की जाती है। सामान्य रूप से मध्यम वर्गीय किसानों एवं पुष्प उत्पादकों को सलाह ये दी जाती है कि पहले वे ऐसे फूलों को चुनें जिन्हें उगाने में पॉलीहाउस एवं आधुनिक तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हीं पुष्पों को उत्पादन में ला के कार्य प्रारंभ किया जाए तथा धीरे धीरे बाजार की मांग के अनुसार पुष्प उत्पादन के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। गेंदा, ग्लैडुलस, रजनीगंधा, देसी गुलाब ऐसे फूल हैं जिनको भागलपुर के मैदानी क्षेत्रों में सरलता से उगाया जा सकता है। आज हम ऐसे ही फूलों की खेती के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेंदा की खेती के बारे में। गेंदा को मैदानी क्षेत्रों में वर्ष भर तथा पहाड़ों पर अधिक ठंडे समय पर उगाया जा सकता है। गेंदे में 2 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। पहली अफ्रीकन गेंदा, जिसका फूल बड़ा, रंग पीला या नारंगी या सफ़ेद होता है। दूसरी प्रकार का गेंदा फ्रेंच गेंदा कहलाता है, जो इसका पौधा छोटा होता है एवं फूल भी छोटा लिए हुए लाल रंग, पीला रंग या दोनों रंगों के मिश्रण लिए हुए होता है और फूलों का आकार भी काफ़ी हद तक छोटा होता है। गेंदा के बीज की बुआई वर्ष में 3 बार की जाती है। प्रथम बार जून के मध्य में, रोपाई जुलाई के मध्य में तथा पुष्प उत्पादन वर्षा के अंत में होता है। दूसरी बार बीज की बुआई सितंबर के मध्य में, रोपाई अक्टूबर के मध्य में तथा पुष्प उत्पादन जाड़े में होता है। तीसरी बार गेंदा की बीज की बुआई जनवरी फरवरी माह में, रोपाई फरवरी मार्च में तथा पुष्प उत्पादन गर्मी में होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए लगभग 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बड़े आकार वाले गेंदे की रोपाई के लिए 45 से 60 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी पर तथा छोटे आकार के गेंदे की रोपाई 25 से 30 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी पर करना उचित रहता है। रोपाई से पूर्व खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से करना उचित रहता है। फास्फोरस एवं पोटाश की 200-200 किलोग्राम मात्रा अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला लेनी चाहिए। वहीं नत्रजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय और आधी मात्रा रोपाई के 30 एवं 60 दिन के अंतराल पर छिड़कनी उचित रहती है। खेत में हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए एवं पौधे जब 6 इंच के हो जाएं तो एक बार उनकी मुख्य कलिकाओं को तोड़ देना चाहिए, जिसे हम फुनगी तोड़ना बोलते हैं। जब ये शाखाएं भी 6-6 इंच की हो जाएं तो एक बार पुनः इनकी फुनगी को तोड़ना चाहिए, जिससे हमें अधिक शाखाएं एवं अधिक मात्रा के मध्य आकार के फूल प्राप्त होंगे। भारत में गेंदा की 2 किस्में पूसा द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें मुख्यतः पूसा नारंगी गेंदा एवं पूसा बसंती गेंदा है, जो किसानों को अच्छा लाभ दे रही हैं। यदि गेंदे की समय से रोपाई करी जाए और उत्तम प्रबंधन किया जाए तो अफ्रीकन गेंदा में हम 110 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा फ्रेंच गेंदे में 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूल प्राप्त कर सकते हैं। अब गेंदे के बाद हम दूसरी पुष्प के बारे में बात करेंगे, वो है ग्लैडुलस। ग्लैडुलस को हम कंदों से उपजाते हैं, तो इसमें हम मध्य आकार के बीमारी रहित कंदों की छटाई करते हैं, उनको बेबस्टीन नामक दवा से उपचारित करते हैं, इन्हें 30 मिनट तक डुबोकर छाया में सुखाकर तब हम रोपाई करते हैं। अधिक जैविक पदार्थ वाली हल्की भूमि ग्लैडुलस के लिए उत्तम रहती है। एक खेत में 2 से 3 वर्ष तक ही ग्लैडुलस की खेती करनी चाहिए, इसके बाद खेत को बदल देना चाहिए ताकि फ्यूजेरिया रोग जो है वो उससे हम बच सकें। रोपाई 15 सितंबर के प्रारंभ कर 1-1 सप्ताह के अंतराल पर करना उचित रहता है, इससे पुष्प उत्पादन में भी निरंतरता बनी रहती है। कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करनी चाहिए। अंकुरण होने पर पौधों पर हल्की मिट्टी चढ़ाना लाभप्रद रहता है। रोपाई के लगभग 75 से 90 दिन बाद फूल आने लगते हैं। यदि स्थानीय बाजार में फूलों की बिक्री की जानी है तब नीचे से 1-2 फूल पूरी तरह खिल जाने पर ही फूलों को काटना चाहिए, परंतु सुदूर बाजारों के लिए जब नीचे वाले फूल पर हल्का रंग दिखने लगे तभी फूलों को पानी में डालकर काट लेना चाहिए। फूलों की आवश्यक छटाई के बाद आवश्यकता अनुसार 10-10 या 20-20 के गुच्छे में बांधकर गत्ते के डिब्बों में बंद कर बाजार में भेज दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से 80,000 से 1,00,000 कंदों की रोपाई की जाती है। इनसे इतने ही कंद तथा फूल एवं 30 से 40 कुंटल छोटे छोटे प्रकंद, जिन्हें कॉर्मलेट कहते हैं, वे भी प्राप्त हो जाते हैं। कॉर्मलेट को प्रायः एक सीजन उगाकर या एक ऋतु उगाकर पूर्ण कंद के रूप में विकसित किया जा सकता है। ग्लैडुलस की अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें मुख्यतः अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, फ्रेंडशिप, नजराना, आरती, अप्सरा, शोभा, सपना और पूनम है। रजनीगंधा के बारे में भी यदि हम बात करें तो ग्लैडुलस की तरह रजनीगंधा की भी खेती सामान्यतः इसी प्रकार से की जाती है, परंतु इस फूल में प्रायः 2 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। प्रथम वे किस्में हैं जिन पर सिंगल फूल आते हैं। इन किस्मों के फूलों में खुशबू अधिक होती है तथा इनका प्रयोग तेल निकालने एवं गजरा या बेनी बनाने के प्रयोग में किया जाता है। दूसरे प्रकार की वे किस्म हैं जिन पर बड़े आकार के फूल आते हैं और इन किस्मों को कटे हुए फूल के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। कंदों की रोपाई का सबसे उत्तम समय मार्च से अप्रैल माह होता है। सामान्यतः 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के कंद रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। डबल आकार के किस्मों की रोपाई 30x20 सेंटीमीटर तथा सिंगल आकार की किस्मों को 20x20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से हम 2 से 4 लाख तक पुष्प डंडियां, जिनको स्पाइक बोला जाता है, एवं सिंगल किस्मों से 30 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खिले फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 हेक्टेयर से 35 से 60 क्विंटल कंद भी प्राप्त होते हैं। अब इन फूलों के बाद हम भारत के एक ऐसे फूल के बारे में बात करेंगे जिसकी खेती मुगल काल से हो रही है और वे है देसी गुलाब। देसी गुलाब गुलकंद, गुलाब के तेल और गुलाब जल जैसे उत्पादों का प्रमुख स्रोत है। सदियों से देसी गुलाब के उत्पादों का उपयोग उच्च कोटि के परफ्यूम्स, कोलोन्स तथा त्वचा एवं बालों की कांति वर्धक कॉस्मेटिक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि गुलाब जल का उपयोग त्वचा एवं आंख संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो देसी गुलाब के पौधों को अगर हमें उगाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए चमकदार धूप। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु दोमट एवं बलुई दोमट भूमि जिससे पानी का निकास अच्छा हो इसके लिए उत्तम होती है। ज्वाला, हिमरोज, नूरजहां, रानी साहिबा, चैती गुलाब और ग्रसन टैबलेट्स इसकी उन्नत किस्में हैं। देसी गुलाब का प्रवर्धन हम एक वर्ष पुरानी शाखाओं की कटिंग से करते हैं। इसकी मुख्य खेत में स्थापना के लिए जाड़े का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। इन कटिंग्स को नर्सरियों में क्यारियों में पंक्ति से पंक्ति 20 से 30 सेंटीमीटर तथा कटिंग से कटिंग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। नर्सरी में उगाई गई एक से दो वर्ष पुरानी कटिंग्स जिनमें जड़ें अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं, हम इन्हें 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढों में 50x50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। देसी गुलाब के रोजरी प्रक्षेत्र में रोपण के लिए तीसरे वर्ष से व्यवसायिक रूप में फूलों की उपज मिलती है। फूलों की तुड़ाई प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह के समय करनी चाहिए, क्योंकि इस समय फूलों में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। फूलों को ऐसी अवस्था पर तोड़ना चाहिए जब उनका आकार कप की तरह हो, यानी ये पूरी तरीके से खिले हुए ना हो, अतखिले हों। फूलों को प्रोसेसिंग हेतु भेजने के लिए तुड़ाई के बाद हवादार बांस की टोकरियों में ही रखना चाहिए और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए फूलों की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत प्रसंस्करण के लिए भेज देना चाहिए। देसी गुलाब की उपज प्रायः 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जिससे पायलट स्केल पर तेल की रिकवरी 0.02 से 0.03 तक होती है। अगर हम सभी बातों के साथ साथ किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि किसी भी फूल को उगाने से पूर्व बाजार का सर्वेक्षण कर फूलों की बिक्री की उचित व्यवस्था अवश्य कर लें, क्योंकि फूलों का अधिक समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। फूल के पौधों, कंदों या कलमों की रुपाई कभी भी एक साथ एक समय पर ना करें। रुपाई में अंतर रखें जिससे फूल बाजार में निरंतर प्राप्त होते रहें। समय एवं मांग के अनुसार ही फूल उगाएं तथा लगाई जाने वाली किस्म, फूल के रंग एवं आकार को उस क्षेत्र या समाज या त्योहार या अवसर के अनुसार ही लगाएं, जिससे कि फूलों की बिक्री में कोई परेशानी ना हो तथा फूल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
2: जी, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दी। निश्चित रूप से वैसे किसान भाई जो बड़े पैमाने पर फूल की खेती करना चाहते हैं इस वार्ता के माध्यम से लाभ उठाएंगे। और निश्चित रूप से किसान भाई, आज के परिप्रेक्ष्य में छोटे छोटे जगह पर जहाँ पर खास करके पटवन के साधन अच्छे हैं, थोड़ी बलुआही मिट्टी है या ऐसी जगह जहाँ पर पानी थोड़ा आसानी से ससर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फूल के गाछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पानी से जड़ सड़ गया तो फिर गाछ आपका मर जाएगा। और हाँ, कुछ फूलों में बहुत और प्राय पानी की भी आवश्यकता है, तो इस बात का भी ध्यान देना है। एक अच्छी बात यह कि फूल की खेती में पानी की आवश्यकता पड़ती है लगातार आधार पर, लेकिन कम पानी की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए गेंदा गाछी लगा लिए,

तो भाई तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो कोड़ने के बाद क्यारी में आप एक एक लोटा पानी दे दिए तो 10 दिन फिर आप निश्चित रहेंगे। हालांकि एक दिन के बाद एक दिन भी पानी, जो बड़े बड़े फूल खिलते हैं जिसको जिसको कि क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े हाइब्रिड भी अभी आए हैं, कृषि वैज्ञानिकों ने उसको उसको आविष्कार जो किए हैं, तो बड़े बड़े पौधे होते हैं तो वो देखने में बड़ा सुंदर होता है, तो उसकी मांग भी ज्यादा है, तो जितनी मांग होगी बिक्री उतनी होगी, आपकी आमदनी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए, किसान भाइयों के साथ बातचीत हमारा अभी लगातार जारी ही रहेगा। एक बढ़िया सा पहले गीत सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।

0: भाई
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया। ये
1: हाँ
0: कृषि गीत हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ सुन रहे थे विदो भाई,
1: हाँ
0: और खेती बाड़ी की चर्चा में भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है
1: हाँ हाँ हाँ
0: मौसम और परिस्थिति को देखते हुए।
1: हाँ
0: और वैसे मौसम की बात यदि करें, अभी की जो परिस्थिति है, तेज़ चिलचिलाती धूप और उसमें खेत किसान भाई जोत रहे हैं, कहीं पर किसान भाई वो नया बाग लगाने की तैयारी में है, गड्ढे खोद रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो ठीक है, खेती बाड़ी ये तो मुख्य जीविका के साधन हैं, लेकिन थोड़ा बच बचा के और अभी खेत की जुताई कुड़ाई या निकौनी वगैरह करनी है, कलौनी करनी है, कुछ पटवन भी करने हैं खास करके मक्का में, तो या तो बिल्कुल सवेरे का समय रखें या फिर उल्टी बेला, तो इसमें
1: हाँ
0: आपको भी थोड़ा राहत होगा, जान माल भी थोड़े सुरक्षित रहेंगे। वैसे मौसम का मिजाज जो है बिहार में, जो मूल रूप से ये अभी पूर्वानुमान हैं, तो इसमें लू हीट वेव चलने की संभावना तो बनी हुई है ही,
1: हाँ
0: और चमक के साथ कहीं कहीं तेज़ हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है, और सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 65% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ यानी कि पश्चिमी हवा चलने की भी संभावना है, और शेष दिनों में दक्षिण पूर्वी भी हवा चलने के अनुमान है। मुख्य फसल जो हमारा धान है, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जो हैं जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा और VPT, ये नस्ल का नाम है, जो ये प्रभेद हैं, इसकी नर्सरी की अभी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, और स्वस्थ पौधे के लिए अपनी जो नर्सरी है वहाँ पर कंपोस्ट जो देसी खाद हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद उपयोग में लाएं। नर्सरी की क्यारी की चौड़ाई जो है 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर